ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये तो सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तो हम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत के कन्ने। वहाँ सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

कंचन धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

मनोरंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी। श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुनदे ना कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पन दी।

क्या नो दशमलव 2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च आगे कने सुन ले ना कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर घर में

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियां देखो।
3: देखने तो वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे,

0: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।
1: रहती है जल जाए परवाना, जल के राख

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

जीना है। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड

0: अपने आप शांत हो जाता है।
1: अगर तुम्हें लगता ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
2: देखने तो देती नहीं।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे,

दोस्तों, अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, खामोशी से दिया जाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं ताकि आपकी शांति छीन सकें। ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिए, ना बहस दीजिए, ना ही सफाई दीजिए। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी मौजूदगी हटा लें, क्योंकि जो आपकी कद्र नहीं करता उसे आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब दे देती है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत रूटीन के साथ आप सभी की हो चुकी है, और बात करें आज तो 7 जून 2026 का दिन है। तो जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, और अपनी सेहत का ध्यान और अपने अपनों की सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं, क्योंकि मौसम कभी सर्द तो कभी गर्म, जब बारिश हो रही है तो थोड़ी सी ठंड लगनी शुरू हो जा रही है। तो ऐसे में जो है बीमारियाँ थोड़ी सी हमें जकड़ना शुरू कर देती हैं। तो बिल्कुल इसीलिए तो कहते हैं ना कि ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं जी दोस्तों। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं, और ढेर सारी बातों के साथ ढेर सारी जानकारियां, और साथ ही साथ ढेर सारा मनोरंजन आप सभी इंजॉय करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज संडे का दिन है, खुशी का दिन है, मस्ती का दिन है, तो जरूर जी दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि बातचीत का ये सफर अब जारी रहने वाला है 11 बजे तक। तो आप सभी को जुड़े रहना है ये जानने के लिए कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास रहने वाला है।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जी दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी डेली की रूटीन के साथ। खैर, आज के समय, आज के दिन की हम बात करें तो आज के दिन की रूटीन तो थोड़ी सी बिगड़ी हुई सी होती है, या यूं कहें थोड़ी सी हिली डुली सी होती है, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो वो रूटीन या तो थोड़ा सा समय में फेर बदल हो जाता है, क्योंकि जो हम सुबह उठकर 4 बजे या 5 बजे से रूटीन को शुरू करते हैं, वो छुट्टी वाले दिन थोड़ा आराम से, नहीं आज किसी ने जाना तो है नहीं तो क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए, थोड़ी रेस्ट की जाए और आराम से फिर हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करें या जो भी है अपनी रूटीन की शुरुआत करें। तो बिल्कुल होना भी चाहिए, एक दिन रेस्ट का होना चाहिए और ख़ास करके घर की महिलाओं के लिए ये दिन थोड़ा सा रेस्ट फील करवानी चाहिए बाकी सभी घर वालों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो घर पे रहते हैं तो उन्हें कोई काम नहीं होता, उन्हें सिर्फ खाना बनाने का काम होता है, तो वो तो बनाएंगे ही। तो ये सोच हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज के दिन हम सभी को मिल के हाथ बटाना चाहिए और हर काम में हेल्प करानी चाहिए, ताकि घर की महिला को भी लगे कि नहीं आज वाकई में छुट्टी है तो थोड़ी मेरे काम में भी मेरे को हेल्प हो गई। तो होना चाहिए ना ऐसा, जब सभी को ऐसा फील होता है तो उनको भी होना चाहिए, वो भी डिजर्व करती हैं। जी दोस्तों, अब थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं मौसम पे। तो धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो इस समय लगभग आप सभी महसूस कर सकते हैं 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी तापमान को जो है वो महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इन पिछले 2 दिनों की बात करें या एक दिन आज की ही बात करें, तो सुबह उठते ही जो तीखी सी धूप, तो ऐसा लग रहा था तेज गर्मी जो है पूरे दिन रहने वाली है। तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मिली राहत और अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। जी दोस्तों, मौसम साफ होने और तेज धूप निकलने से प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर जो है वो बढ़ने लगा है। शनिवार की हम बात करें तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जी दोस्तों, बिल्कुल मैं आप सभी से ये बताऊं कि जैसे कल धर्मशाला की ही बात करें तो कोई लगभग 3-4 बजे के आसपास इतनी तेज बारिश हुई और जैसे ही थोड़ी सी वो बारिश बंद हुई और फिर धूप निकल आई तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई भी है या नहीं हुई, ऐसी इतनी गर्मी लग रही थी ना कि बस। तो यही है, जब बारिश हो रही है, लगी हुई है, तब लग रहा है कि नहीं ठंड है, और जैसे ही बारिश बंद फिर तो गर्मी का आसार एकदम से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी को खुलकर खुशी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो हर एक बात पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि ये तो बातचीत का सिलसिला है और जब जिंदगी से जुड़ी बातें सामने आने लगें तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। एक के बाद एक, जिस तरह से हमारी इच्छाएं एक पूरी होती नहीं कि दूसरी पहले ही मन में आ जाती है, तो उसी तरह से। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमारी ये बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

0: राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल से होगा शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विधिवत करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार के सहयोग से केलंग में 9 जून को विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला की जाएगी आयोजित। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस वर्ष की थीम भोज से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा धर्मशाला में विशाल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस महाशिविर में देश भर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह संधावालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: महाशिविर में देश भर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञ, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्य को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह सांदेवालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ को आवश्यक बताया। शिविर में न्यायाधीश लोंग मैकापम, कोटेश्वर सिंह और संजय करोड़ ने भी संविधान की मूल भावना और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी वितरित की गई। कार्यक्रम में विधि छात्राओं और युवाओं की भागीदारी विशेष आकर्षक रही, जिन्होंने अधिकार और कर्तव्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल पालमपुर उपमंडल के प्रवास के दौरान विभिन्न प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों के साथ चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर अधिकारियों के साथ अपने व्यापक अनुभव साझा किए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं और अधिकारियों की शंकाओं का मौके पर ही निवारण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार जनता की उपेक्षाओं और समस्याओं से कट चुकी है और उसका पूरा ध्यान केवल सत्ता का आनंद लेने तक सीमित है। हमीरपुर में कल नाउ फॉर क्लाइमेट अभियान के तहत आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के अपने नेता भी सवाल उठा रहे हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास प्राप्त कर चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम आंकना उचित नहीं है। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल 8 जून से शुरू होगा। 12 जून तक चलने वाले इस भव्य आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 कलाकार अपनी प्रतिभा का इस कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। उपायुक्त व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आयोजन समिति अनुपम कश्यप ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना तथा स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
2: उद्घाटन संध्या पर बॉलीवुड पार्श्व गायक शबाब शाबरी अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन करेंगी, जबकि दूसरी संध्या पर ज्योतिका टांगरी, तीसरी संध्या पर नाटी किंग कुलदीप शर्मा, चौथी सांस्कृतिक संध्या पर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर और अंतिम समापन संध्या पर जस्सी गिल और बबल राय अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल एडवेंचर और रोमांच से भरपूर होगा। सैलानियों व स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से शिमला की पहाड़ियों की सैर करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा शिमला समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से लाहौल स्पीति के युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए 9 जून को केलंग में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये कार्यशाला मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग विषय पर आधारित होगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिक ब्यौरा हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
1: कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इंडोर स्टेडियम केलंग में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार ये प्रशिक्षण स्थानीय युवाओं, व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ये कार्यशाला डिजिटल युग में सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व में भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कृषि, मत्स्य व वानिकी के क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम भोज से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन रखी है, जो इस बात पर जोर देती है कि बीमारी, उससे जुड़े बोझ और जान गंवाने वालों से जुड़ा डेटा कैसे केंद्रित और किफायती समाधानों की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या का कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझ खरीदारी करना आसान हो जाएगा। अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अभिनेता रोहिताश्व गौड़ और संघ की उपाध्यक्ष रेखा गौड़ ने कल लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रोहिताश्व गौड़ ने राज्यपाल को अखिल भारतीय कलाकार संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 71वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता का कल से शिमला में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 10 जून तक चलने वाली इस सांस्कृतिक आयोजन में देशभर से हजारों कलाकार भाग ले रहे हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, भांग की खेती के लिए बदलेंगे नियम, हिमकेयर में अब तक 7 से 10 लाख तक मुफ्त इलाज, 2000 पद भरेंगे। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, सुक्खू सरकार देगी 1300 नई नौकरियां। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, 1400 से ज्यादा नए पद भरने को कैबिनेट की मंजूरी। दैनिक जागरण के अनुसार 20 बीघा से कम भूमि के कब्जे नियमित होंगे, 2542 अस्वीकृत करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर किया जाएगा पुनर्विचार। पंजाब केसरी की एक खबर है, प्रधान उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह 15 को, मुख्यमंत्री कांगड़ा में दिलाएंगे शपथ। दैनिक भास्कर लिखता है, पर्यटक अब 600 रुपये देकर भी पहुंच सकेंगे मनाली से रोहतांग दर्रा। दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है, अम्ब से कोलकाता तक गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन को सांसद अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा में आयोजित विशाल जागरूकता शिविर में जुटे देश के शीर्ष न्यायविद। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल से होगा शुरू, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे विधिवत शुभारंभ। केंद्र सरकार के सहयोग से केलंग में 9 जून को विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला की जाएगी आयोजित। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस वर्ष की थीम भोज से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। जी दोस्तों, आज का ये प्यारा सा कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके घर की चाबी आपके पास है, आपकी गाड़ी की चाबी आपके पास है, लेकिन आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और धूप बहुत ही तेज है, वाकई में बहुत तेज धूप है बाहर। आप अपने काम में मग्न हैं और तभी एक अजनबी अपनी बाइक रोककर आपको बिना वजह कुछ भी सुनाकर चला जाता है। अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और आप चिल्लाने लगते हैं। बधाई हो, उस अजनबी इंसान ने आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपसे छीन लिया। वाकई में है ना ये सोचने वाली बात? दोस्तों सोचकर देखिए इस बात में क्या लॉजिक है, क्या इसमें कुछ ऐसी खास बात इन शब्दों में झलक कर सामने आई कि जिससे हमें खुद पे गौर करने की जरूरत है। बहुत ऐसे गंभीर से छोटे छोटे से शब्द थे, लेकिन बहुत गहरी बात इन शब्दों में छिपी हुई है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइए, सोच कर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो हमें समझनी चाहिए। तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

तो बहुत ही प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अपनी होस्ट एंड दोस्त सुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो दोस्तों बातों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर। तो आइए जानते हैं एक खास जानकारी। दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी इग्नू अध्ययन केंद्र 1136 राजीव गांधी मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय जोगिंदर नगर के सहायक समन्वयक प्रोफेसर नवीन निशल और वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 1102 के समन्वयक डॉक्टर राजकुमार ठाकुर ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। जी दोस्तों एग्जाम्स भी चल रहे हैं और साथ ही साथ ये जो मतलब कि प्रवेश की आवेदन भी शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन। तो अगर आप करना चाहते हैं इग्नू के थ्रू पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों साथ ही साथ हम जो है एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। हम अपना कोई और कोर्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और साथ में इग्नू के एग्जाम्स या कोई भी स्टडी कोई भी हम अगर उसमें भी कोर्स कर रहे हैं तो वो भी हम आराम से कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा हमें टेंशन वाली बात नहीं होती है। साइड वाइज एक तरह से आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक बहुत सुनहरा सा अवसर है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है तो इसे गंवाना क्यों ही चाहिए। तो बिल्कुल इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा मीठा सा गीत आप सभी के लिए। आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद खूबसूरत संगीत। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जानकारियों से भरा और बहुत ही खास बातों से भरा। दोस्तों आज 7 जून 2026 का दिन है। कैलेंडर में तो संडे है लेकिन आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। क्या दिन है, क्यों स्पेशल है, क्या इतिहास के उन पन्नों को पलट कर देखा आप सभी ने? नहीं देखा ना अभी तक। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी रुचिका के साथ आप सभी की मुलाकात होती है तो इतिहास में जरूर जाते हैं और जानते हैं दिन की खासियत को। हर पल की खासियत है लेकिन दिन की क्या खासियत है इतिहास में, वो भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये जो कहानियाँ प्रेरणादायक बातें जो होती हैं वो हमें ज़िंदगी में ना एक सही दिशा के लिए प्रेरित कर जाती हैं। छोटी सी छोटी बात, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था ना कि एक बात, इन शब्दों में एक बहुत गहरी सी बात छुपी हुई है। वो शायद कुछ लोग तो समझ गए होंगे लेकिन कुछ लोग अभी तक नहीं समझे होंगे, उस पर भी हम जरूर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का दिन क्यों खास है। जब भी बारिश होती है, सर्दियों का मौसम होता है या फिर गर्मियों के ही बात करें तो कुछ खाने का मन करता है कि गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा आइसक्रीम हो जाए, नींबू पानी हो जाए या फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने अपने शौक के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम खाने में बहुत शौकीन रहते हैं, खास करके फास्ट फूड में, है ना। वो तो चाहे गर्मियां हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो नहीं छूटने वाला। जी दोस्तों, तो आज के दिन आप सभी मना रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना तो हम रोज खाते हैं, इसमें सेफ्टी की क्या बात है? अरे बात तो है जी दोस्तों, बात बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, और मैं कहती हूँ दोस्तों, जैसा सुरक्षित अन्न वैसा तंदुरुस्त जीवन। जब तक हम सुरक्षित अन्न नहीं खाएंगे तब तक हम हेल्दी कैसे रहेंगे? कुछ भी अनाप शनाप जब हम खा लेते हैं तो उससे बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं हम उन्हें कि आइए आइए और हमें जकड़ लीजिए। तो बिल्कुल ये जो बाहर का जो हमें जंक फूड खाते हैं, कई बार दोस्तों हर किसी का जो है डाइजेस्ट करने का सिस्टम एक जैसा नहीं होता है ना। किसी को मतलब कि हो सकता है किसी चीज़ से नहीं अच्छा लगता हो, तो जो हम बाहर एक दूसरे को देख के या ऐसे यूं कहें कि जब देखते हैं तो मन कर पड़ता है कि नहीं ये भी खा लें वो भी खा लें, तो सबसे पहले तो हमें उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन, खाना हम खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कुछ भी यहाँ वहाँ से खा रहे हैं या फिर खाते ही जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए सोचना ज़रूरी है। क्योंकि ये बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना या तो बहुत ज़्यादा खा लेना, ये हमारे लिए ये भी बीमारियां पैदा करता है। कई बार क्या होता है कि हम खाते नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं और मोटापे से तो हर कोई परेशान हो जाता है, तो कई बार हम क्या करते हैं खाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। या तो फिर कई बार हम इतना खाते हैं बस भूख लगती रहती है, जब भूख लगे तब खाते रहते हैं, खाते जाते हैं। वो कहते हैं ना, पेट भर जाता है पर आँखें नहीं भरती, तो उससे भी हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। तो हर चीज़ की एक लिमिट, बैलेंस डाइट अगर हम लें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल हमें अपने कार्यक्रम में बैलेंस बनाए रखने के लिए बातचीत के साथ साथ प्यारे प्यारे से गीत आप सभी तक पहुंचाने हैं। तो आइए जी दोस्तों, अपनी बातचीत को देते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत आप सभी के लिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। जन्म के समय हम कमज़ोर होते हैं और जाते समय भी कमज़ोर ही होते हैं। पहली बार हमें किसी और ने नहलाया था और आखिरी बार भी कोई दूसरा ही। हम खुद कुछ नहीं कर पाए इस दुनिया में। फिर सोचिए, किस बात पर इतना घमंड, किस बात पे इतनी नफरत, किस बात पे दूसरों से जलन, किस बात पे इतनी खुदगर्जी। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हम इसे बेकार बातों, झगड़ों, दूसरों की बुराई और ईर्ष्या में गवा देते हैं। अगर ये बात सच में, वाकई में सच है ना दोस्तों, तो ज़रूर इन बातों को कम कर दीजिए, क्योंकि अहंकार कभी भी किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा तो नहीं कर पाया है। जब कोई इंसान ये सोच लेता है ना कि हमें तो किसी की मदद की ज़रूरत है ही नहीं। दुनिया में बहुत से लोग हैं, या कई बार ऐसा पैसों का घमंड वहाँ पे आ जाता है कि हम जो है बढ़िया से बढ़िया लोग अपने साथ जोड़ सकते हैं और जिसको हमारे साथ नहीं जुड़ना है वो जाए। लेकिन जो इंसान शुरुआती दौर में आपका साथ देता है, जो एक कहते हैं ना कि छोटे से तिनके से एक घर को बड़ा करता है, अगर उसे आप समय आने पे वहाँ से एक तरह से नकार देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो सोचिए आप उस इंसान से कितनी बददुआएं लेंगे। तो कभी भी किसी इंसान से बुरा क्यों सुनना है। जिंदगी में आए हैं तो अच्छा कीजिए। और पैसा हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। जिस इंसान का दिल बड़ा है ना दोस्तों, वो जिंदगी में कभी हार भी नहीं मानता और मुश्किल समय में भी उसके साथ हजारों लोग खड़े होते हैं, क्योंकि कभी उसने किसी का बुरा नहीं किया, कभी उसने जरूरतमंद इंसान से नजरें नहीं मोड़ी। जिस इंसान ने उसका साथ दिया, उसने उससे बढ़कर उसका साथ दिया। तो ये होती है असल में इंसानियत। लेकिन हम इस जिंदगी में बस इसी बातों में उलझे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कैसे किसी को परेशान किया जाए, कैसे किसी की नींव को हिलाया जाए। तो बस इन्हीं बातों में हम घमंड में जब आगे बढ़ते हैं तो लोगों को नज़रअंदाज, उन्हें उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ये सब बातें यहीं की यहीं रह जाएंगी। साथ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अच्छा व्यवहार, हमारे अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए। बाकी दुनिया में आते जाते रहती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें।

दोस्तों, अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया फिल्म हम सब चोर हैं से ये प्यारा सा गीत। जी दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आप सभी को लेकर चलते हैं एक और बेहद खास जानकारी की ओर।

दोस्तों, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। सिश इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड एवं सिक्योरिटी सुपरवाइजर केवल पुरुष के 180 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की सूचना जिला रोजगार कार्यालय धर्मशाला को प्राप्त हुई है। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, जबकि इससे अधिक शिक्षित अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। जी दोस्तों, आवेदकों की आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनका कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 18,000 रुपए से 24,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इन पदों के लिए साक्षात्कार 8 जून 2026 को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय बैजनाथ में आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य कोई देय राशि प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और आप सभी ने ट्यून किया है इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। बहुत ही प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, और गौर किया उन शब्दों पे कि क्या गहराई थी। एक अजनबी इंसान आपको कुछ भी बोल दिया और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई हो गया, यानी कि आपका दिमाग का कंट्रोल किसी और के हाथों में चला गया। तो क्या वाकई में आपकी जिंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है? ये है उन शब्दों की गहरी सी बात कि आप अपने आप को जानते ही नहीं है, आपका कंट्रोल खुद पे है ही नहीं। जी दोस्तों, उस अजनबी इंसान ने एक बटन दबाया और आप उसके इशारों पर नाचने लगे। क्या आप वाकई में इतने सस्ते हैं? क्या आपकी मानसिक शांति इतनी लाचार है कि कोई भी सोशल मीडिया का कमेंट, कोई ऑफिस का साथी या कोई राह चलता इंसान इसे राख कर दे? है ना ये सोचने वाली बात दोस्तों। आपकी मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ देते हैं कुछ खास बातें। जो कंट्रोल आप दूसरों के हाथों में दे देते हैं कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही पलों में सब भूल जाते हैं। ये गुस्सा जो है हम पे इतना हावी हो जाता है ना दोस्तों कि कब कहां से कहां हमें पहुंचा दे हमें खुद पता नहीं चलता। रिश्ते टूट जाते हैं, हम खुद टूट जाते हैं, कई बार बाद में पछताते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी तो कहते हैं गुस्सा जब आए ना तो बस मुंह बंद कर लीजिए और दांतों को जोर से दबाइए, उस गुस्से को पी जाइए, क्योंकि गुस्से में बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ जाती है। एक बहुत गलत इमेज दूसरों के सामने आपकी जाती है। तो फिलहाल दोस्तों इन बातों पे सोच कर देखिए कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करते हैं या आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे उस पर काबू किया जाए, दूसरे ही उस पर कंट्रोल कर सकते।

खुद हम अपनी जिंदगी में खुद का कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या क्या तरकीबें हैं, क्या क्या उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये सोचने के लिए समय तो चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, देते हैं आप सभी के लिए समय और उसके सोचने तक आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस प्यारे से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और अब समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम। आप सभी अपनी डेली रूटीन के साथ छुट्टी के दिन एंजॉय कर रहे हैं इस प्यारे से सफर को। जी दोस्तों, अक्सर समाज में ये सिखाया जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। हमें लगता है कि अगर हमने पलटकर जवाब नहीं दिया तो दुनिया हमें कायर समझेगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत होता है। चिल्लाने के लिए सिर्फ फेफड़ों की ताकत चाहिए और चुप रहने के लिए फौलादी कलेजा चाहिए। जब आप चुप रहते हैं तो आप जो है वो हार नहीं रहे होते, बल्कि आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। विचार कीजिए, एक खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करता है, जबकि समंदर की गहराई में हमेशा सन्नाटा रहता है। आप क्या बनना चाहते हैं? वो सड़क किनारे पड़ा टीन का डब्बा या गहरा समंदर जिसकी गहराई का अंदाजा कोई ना लगा सके? जी दोस्तों, मौन एक साइकोलॉजिकल फिल्टर है। जब आप चुप होकर सामने वाले के गुस्से को देखते हैं तो आप उसे उसके असली रूप में देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि वो इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितना डरा हुआ है और कितना असुरक्षित है। मौन आपको वो नजरिया देता है। जी दोस्तों, अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी चुप्पी ना बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन गुस्से में हम ना चाहकर भी पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो इसलिए किसी को चुप रहकर भी जो है उनकी बातों का जवाब दिया जा सकता है। कहते हैं ना कि आगे वाला इंसान ये सोचता है कि पलटकर कोई तो जवाब जरूर देगा और फिर मैं दो चार और बोल के मतलब यहां से जाऊंगा, तो उन्हें मौका ही मत दीजिए। जब आप चुप रहेंगे तो भी वो अंदर से परेशान कि भाई इसने कुछ बोला क्यों नहीं, मैंने इतना कुछ सुना दिया और इस बंदे ने चूं तक नहीं की, तो वो खामोशी भी उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहेगी। लेकिन जो बंदा खामोश है वो सुकून से है कि कोई बात नहीं, दुनिया बोल रही है, बोलने दीजिए। मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? मैं अपनी जिंदगी का ये कीमती समय क्यों जाया करूं, वो भी एक अजनबी इंसान के लिए? क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हाथों में है, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सामने वाले के हाथों में है तो फिर वो एक बटन दबाएगा और आप तो वैसे सातवें आसमान पे, और कब सातवें आसमान से नीचे धरती पे पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो आप कहाँ रहना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिलहाल इसी बात के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, जानकारियां बेहद जरूरी और बेहद खास है जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ साथ। दोस्तों, हिमाचल सरकार ने 75 से कम छात्र संख्या वाले 10 सरकारी डिग्री कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है। इन कॉलेजों में इस सत्र में कोई नई एडमिशन करने पर रोक लगा दी गई है। इन 10 कॉलेजों में वर्तमान में 448 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनमें से 319 को अपने जिला मुख्यालय के कॉलेज अब जाना होगा। इन्हें सरकार 5,000 रुपए का मासिक स्टाइपेंड भी देगी, हालांकि शर्त ये है कि ये स्टाइपेंड जिला मुख्यालय जाने पर ही मिलेगा, अन्य निकटवर्ती कॉलेज में नहीं। इस स्टाइपेंड के लिए करीब 2 करोड़ की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। जी दोस्तों, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार द्वारा जारी निर्देशों में संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को जून से जुलाई के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों की काउंसलिंग कर वैकल्पिक कॉलेजों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए, और आप सभी को ये भी बता देते कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो कि बंद होने जा रहे हैं। टिक्कर कॉलेज शिमला, भलेई कॉलेज चंबा, कुकुमसेरी कॉलेज लाहौल, कुपवी कॉलेज चौपाल, संधोल कॉलेज मंडी, मुल्तान कॉलेज कांगड़ा, जयनगर कॉलेज अर्की, ननखड़ी कॉलेज और रोनहाट कॉलेज सिरमौर, कोटली कॉलेज मंडी। तो ये 10 कॉलेज हैं जो कि बंद होने जा रहे हैं। तो इसी खास जानकारी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से रुक करते हैं मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि शेर कभी भी डॉग्स के चिल्लाने पे पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का पता होता है। उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो जंगल का राजा है। ये सबसे बड़ा सबक है हमारी जिंदगी के लिए कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर इंसान आपकी सफाई का हकदार नहीं होता। जब आप रिएक्ट करना बंद करते हो तो आप सामने वाले के उस अजीब से स्तर को, मतलब कि खुद को उस स्तर पर जाने से, गिरने से बच जाते हैं। अगर कोई कीचड़ उछाल रहा है और आप भी कीचड़ में कूद गए तो गंदे आप भी होंगे। तो बुद्धिमान वही है जो बस किनारे पर खड़ा होकर कीचड़ के सूखने का इंतजार करता है। तो है ना ये कितना बड़ा सबक दोस्तों, कि कैसे अजनबी इंसान ने कुछ भी बोला, हमने उस पे रिएक्ट किया और जो वो चाहता था असल में वही हुआ कि हमने भी उसी के स्तर पर जाकर उसे जवाब दिया। हमारा स्टाइल अलग होना चाहिए, हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। क्यों हम किसी दूसरे इंसान की तरह अपने व्यवहार को बना दें? अगर कोई गलत कर रहा है तो हम क्यों उस पे गलत बन जाएं? हम तो समझदारी से काम ले सकते हैं ना। अगर कोई एक इंसान गुस्से में है और अगर हम भी गुस्से में आ गए तो फिर वो कहते हैं ना कि बनती बातें कम हैं और बिगड़ती बहुत ज्यादा है। तो सोच समझ जो है यहाँ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, कहते हैं कि चाहे समाज के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे देश के लिए, किसी भी बात की हम बात करें तो एक अच्छा लीडर, एक बोलते हैं लीडरशिप स्किल जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कौन होता है? एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी दम पे अच्छाई बुराई सब बातें सामने रखकर आगे आए। और जो इंसान झूठ के सहारे पे या फिर धोखेबाजी से आगे आए और लीड करने लगे और फिर घमंड से भी कहे कि नहीं भाई, हम तो महान हैं, देखिए हमने तो बहुत महान काम किया, लेकिन उसके पीछे का रीजंस क्या है वो कोई नहीं जानता। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, काबिलियत है आप में, तो आप ईमानदारी के साथ उस रास्ते पे आगे बढ़िए, लोगों का साथ लीजिए और लोगों के विश्वास में खड़ा उतर कर दिखाइए। तब जाके हम कह सकते हैं कि ये एक जो है वो अच्छा लीडर है। तो हम कभी भी किसी को भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही जो है हवा में, आसमान में चढ़ा देते हैं और वो सच में चढ़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे बिना तो कोई है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी के फैसले आपके हाथों में होने चाहिए। आपका कंट्रोल आपकी ज़िंदगी पे खुद का होना चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले का या किसी अजनबी का। तो ये बातें ज़रूर ध्यान दीजिए, ज़रूर याद रखिए और अगर आपसे कोई गलती ऐसी हो रही है तो उस पर गौर फरमाइए। तब तक एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

91.2 मेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सफर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का आज का ये आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों, जो छोटी छोटी सी बातें कार्यक्रम में हम करते हैं उस पर आप ज़रूर गौर फरमाते हैं, और अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं भटक रहे हैं तो सही रास्ते पे खुद को लेकर आते हैं। तो अब समय हो गया है दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने का, यानी कि आप सभी से दूर जाने का। तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं,
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे।

वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और आज के इस बड़े ही अनोखे एपिसोड में हम बात कर रहे हैं और सुनेंगे जिंदगी वाले गाने। जी हाँ, जिन गानों में जिंदगी लफ्ज आता है और जो जिंदगी के फलसफे जो हैं वो बयां करते हैं, वो आप सुनेंगे। अब क्या है कि जिंदगी का पहला रूल तो यह है, जो खुसरो साहब फरमा गए ना कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो जिंदगी के दरिया में तो साहब आपको गहरे उतरना ही पड़ता है, हाँ, किनारे की चाह के बगैर, क्योंकि जो मझधार है दरअसल वही आपके आपकी मंजिल है, वही आपका किनारा है। और अभी जो गाना भी आप सुनने वाले हैं ये फिल्म आंधी से है, और इसके हीरो रहे संजीव कुमार साहब, और इनकी ज़िंदगी में एक अजब कश्मकश थी। लोग इनसे पूछते भी, आप शादी क्यों नहीं करते हैं, आप इतने बड़े हीरो हैं, सारी बात सही है, आप शादी क्यों नहीं करते हैं? तो इन्होंने एक बड़ी एक अनोखी बात कही। इन्होंने कहा, मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी पुरुष जो है वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा जिया नहीं, तो मुझे डर लगता है तो किसी और लड़की किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए मुझसे शादी करेगी। तो ये कुदरत का अजब खेल है कि ये भी 50 साल का जो आंकड़ा है वो पार कर नहीं पाए थे। लेकिन साहब कमाल के ये कलाकार रहे, और फिल्म आंधी अपने आप में बड़ा कीर्तिमान इसने साबित किया, कमाल के इसके गाने, स्क्रिप्ट। तो ज़रा इस गाने को सुनते हैं और फिर इस जिंदगी में जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े अनोखे ख्याल जो है वो आपके साथ बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

वीकेंड क्लासिक पर हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और इस एपिसोड में जिंदगी की बातें हो रही हैं, जिंदगी के गाने ही हैं साहब, और ये तमाम गाने जो हैं जिंदगी भर जिंदा रहेंगे, ये हमारा मानना है, हमारा यकीन है। तो मैं ज़रा राजेश खन्ना साहब का जिक्र करना चाहूँगा। ये एक टैलेंट हंट के जरिए आए, ये तो सभी लोग जानते हैं बात, लेकिन किस तरह से आए थे? आखिरी जो राउंड था उसमें प्रोड्यूसर साहब से के पास ये गए और इन्होंने कहा कि आपने मुझे जो स्क्रिप्ट दी है, जिसे मुझे याद करना है और जिसको जिसपे परफॉर्मेंस देनी है, ये स्क्रिप्ट मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें ये एक्टर किससे बात कर रहा है, किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये सारे सवाल क्लियर नहीं है। तो प्रोड्यूसर ने कहा तुम थिएटर वेटर करते हो क्या? जी हाँ, थिएटर से आया हूँ, रंगमंच से आया हूँ। तो ठीक है, तो एक काम करो, जो तुम्हें सही लगती है ना स्क्रिप्ट, तुम अपनी वही स्क्रिप्ट परफॉर्म कर दो। और तब कागा जी ने जो है अपनी ही अपने नाटक की एक स्क्रिप्ट जो है वहाँ पे वो सीन जो है परफॉर्म किया और ये जीते साहब। वाकई सब लोगों को हरा कर ये अव्वल आए। तो इन्होंने ज़िंदगी भी उसी तरह बेबाकी से जी, जो स्टार्डम इन्होंने देखा आज तक किसी सुपर सितारे ने नहीं देखा। जो पहला सुपरस्टार जो टर्म है इनकी स्टार्डम को देखकर बनाया गया। तो काका जी का जिक्र हुआ है तो ये गाना भी ज़रा सुनते हैं हम, और उसके बाद कुछ बड़े अनोखे किस्से हमारे ये जो दिग्गज कलाकार हैं इनकी जिंदगी से जुड़े बांटेंगे, और जिंदगी भर जिंदा रहने वाले ये गाने हम सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

0: कभी तो हंसाए।
1: वीकेंड क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। ये बहुत ही नायाब बड़ा निराला एपिसोड है। जिंदगी पे आधारित गाने जो हैं, वो जो लफ्ज जिंदगी आता है जिन गानों में, वो अभी आपके सामने है, हमने रखे हैं इस एपिसोड में। और अभी जो गाना आप सुनेंगे उसमें एक शिकायत है। हालांकि हर एक जमाना जो है वो दूसरे जमाने से शिकायत करता है। गुजरे वक्त के लोग कहते हैं कि भाई हमारे ज़माने में लाइट वेट नहीं हुआ करती थी, बसें नहीं हुआ करती थी, हम पैदल चल के जाते थे स्कूल कॉलेज, और तुम्हारे पास कितनी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है। तो एक ज़माना हमेशा दूसरे ज़माने से शिकायत करता है, तो इसमें भी एक शिकायत है। लेकिन गुलजार साहब का लिखा यह गाना है। गुलजार साहब की शिकायत दूर करी थी बिमल रॉय साहब। हाँ, बिमल दा ने एक दिन गुलजार साहब से कहा कि देखो गुलजार, तुम ये जो कार गराज में काम करते हो ना, एक काम करना छोड़ दो तुम। हाँ, तुम इतने अच्छे कलाकार हो, कहाँ शोर शराबे में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, तुम बड़े अच्छे कलाकार हो, तुम आगे भी उभर कर ही आओगे। इतना सुना और गुलजार साहब फूट फूट कर रोए। एकदम रोते रोते उन्होंने बिमल दा से कहा कि मेरे खानदान में कभी किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं कही कि मुझमें हुनर है। आपने पहचाना और आप कह रहे हो कि मैं कार गैराज में जो गाड़ियाँ पेंट करने का काम करता हूँ वो छोड़ दूँ और फिल्मों में आऊँ, और बस वहाँ से इनकी ज़िंदगी बदल गई है। ये बड़ी अनोखी, बड़ी जज्बाती कहानी। अब ज़रा जज्बाती गाने भी सुनते हैं और फिर इन कलाकारों की ज़िंदगी से जुड़े कुछ बड़े अनोखे जज्बाती किस्से आपके साथ बांटूंगा इसी एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

और वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और बड़े जिंदा दिल जो गाने हैं जिंदगी से जुड़े वो आप सुन रहे हैं इस एपिसोड में। अब देखिए क्या है कि सुनहरे दौर के जो कलाकार रहे जिन्होंने हमें ये संगीत दिया है, इनके सामने बड़ी चुनौतियाँ थी। अब जैसे मसलन कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, पहले तो ये कल्याण जी वीर जी शाहिन पार्टी के नाम से कार्यक्रम किया करते थे, स्टेज शोज वगैरह करते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, लेकिन जब कल्याण जी आनंद जी ये जोड़ी बनी और जोड़ी बनाकर फिल्मों में संगीत देने की बात आई तो एक अजब पेच पैदा हो गया। आनंद जी भाई और कल्याण जी भाई के पिताजी ने एक दिन आनंद जी भाई को बुलाया और कहा कि भाई एक बात बताओ, अब तो तुम दोनों का नाम एक साथ आ गया, बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो आनंद जी भाई ने कहा क्या गड़बड़ हो सकती है? तो इनके पिताजी ने कहा देखो ऐसा है, हो सकता है कि कल्याण जी के फोटो ज़्यादा छपें, उसके ज़्यादा इंटरव्यूज़ हों, लोग ज़्यादा वाहवाही करें उसकी, तेरी ज़रा कम हो, तू अगर नहीं बोलेगा तो तेरी बीवी बोलेगी कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं हो रहा, बीवी नहीं बोलेगी तो बच्चे बोलेंगे, जब ये मसले खड़े होंगे तब तुम लोग क्या करोगे, कैसे एक साथ काम करोगे, तो ज़माना बड़ा अजब है, भाई भाई लड़ते हैं एक दूसरे से। तो आनंद जी भाई ने वो बात कही जो और ता उम्र जिंदगी भर के लिए एक वादा सा कर लिया उन्होंने। उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता ना करें, कल्याण जी भाई सूरज बनेंगे और मैं चांद बन के उनके साथ साथ चलता रहूँगा, ये कोई हमारे बीच में ईगो टसल होगी ही नहीं। और देखिए क्या कमाल की ये जोड़ी रही और कितने ज़बरदस्त गाने, कितनी अच्छी फिल्मों में संगीत इन्होंने दिया। नवीनी का बनाया है बड़ा अनोखा गाना है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है कि उसे समझा जाए और या सुलझाया जाए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी तो वो सफ़र है जिसमें आप आगे बढ़ते रहें, जितना खेलेंगे इसमें उतनी ही सुलझती जाएगी। अब ये गाना ज़रा सुन लेते हैं और फिर आगे कुछ अनोखे किस्से, जाहिर सी बात है सिर्फ समा वीकेंड क्लासिक पर।

अभी किन क्लासिक पर हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ और जिंदगी के जिंदा दिल गाने जो हैं वो आप सुन रहे हैं जिंदगी में। और अभी जो गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसके जो हीरो हैं वो अमिताभ बच्चन साहब हैं, हीरोइन जया बच्चन जी, फिल्म का नाम है मिली। अब ये भी बात बड़ी अजब है साहब कि अमिताभ बच्चन को कितना तो रिजेक्ट किया गया, कई बार तो ऐसा होता था कि इन्हें एडवांस दे दिया गया है फिल्म का और फिर वो एडवांस वापस ले लिया जाता था, इन्हें तो पिक्चर से निकाल देंगे। एक बार तो ये स्टूडियो से बाहर निकले, इनके माता पिता पहली बार इनकी शूटिंग वूटिंग देखने आए थे और इनकी गाड़ी में बैठे थे तो सिग्नल पर इन्होंने गाड़ी रोकी तो एक आदमी आया और इनके माँ बाप से कहने लगा ये किस लड़के को आपने फिल्मों में हीरो बनने के लिए भेज दिया है, ये किसी चीज किसी काम का नहीं है, इसे फ़ौरन गाँव ले जाओ, अपने वापस लेके जाओ, ये कुछ नहीं कर सकेगा, और दो चार मोटी मोटी गालियाँ भी दी। तो बच्चन साहब ने क्या क्या नहीं सहा साहब, लेकिन वही बात है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली बोवत सौ घड़ा रुताए फल होए। जब सही समय आया इंसान की लगन काम आई और फिर तो हुनर चमका ही चमका। हालांकि गाना ज़रा संजीदा है लेकिन बच्चन साहब की जीवन जो है उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी प्रेरणादायक है साहब, है ना। इस गाने को हम ज़रा सुनते हैं वीकेंड क्लासिक पर।

0: एशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं।
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं।
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
5: अरे बाप रे।

0: कानू दशमलव तोमिका हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिमे शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशु तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सब वर्च तो हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो हाँ सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जीड़ा काम कार है से करा दौने न कने अजकने दिने दी और अगर हाँ तुह जो ले करी जान तो संडे का जिड़ा दिन है से तुह इंजॉय करा दौने न छुट्टी वाला जिड़ा दिन है से तुह वास्ते भी बेहतर खास होंदा कने जितने भी श्रोता न से अपनी जिड़ा छुट्टी है से जरूर इंजॉय करा दौने न कने बच्चे भी अपनी जिड़ा छुट्टियां न से जरूर इंजॉय करा दौने न। पहले जेड़ा श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ चुके न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हां जी धन्यवाद
0: जी। तुह कुथु ते बोल?
1: हां बोला ठीक है ना।
0: हां जी यहां ठीक ठाक है जी। तुह कुथु ते बोला दे कन्ने तुहांदा ना के है जी?
1: हां जी
0: क्या काम काज लगे या क्या करा दे तू आज?
1: बस इंतजार ही करा रहा भाई, दो काल नु बज देगा ना
0: जी। तो दिन दी शुरुआत कदे ही रही तो हुंदी?
1: बहुत बढ़िया, हां भी 4 बजे पे आगा शुरू हो जांदी ना
0: जी। सारे कार्यक्रम कदे लगदे तुहां जो?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
0: जी जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। तां अज नवी ताजी दाड़ी दी? हेलो
1: हेलो
0: दाड़ी दी नई ताजी?
1: नई ताजी नहीं, अजकल अली तुप्पा नहीं निकला रहे हूँ, सबका सुरता जाइए ता लगता पता
0: जी जी अली तुप्पा च घर ही रह देना जी।
1: हाँ जी, वोट पाट की हो जी उड़े ना कस्मा कस्मा खाने का ना कोई मेयर बनाने कोई बनाने से साल उड़ने ता लगता पता
0: जी जी।
1: तेरी अली पुतल पुतली चली जो कोई बना दिए तो लोग
0: जी सोच विचार चल रहा है दीदी वास्ते
1: सोच विचार
0: जी। तो संडे वाला दिन तो हाँ किस प्रकार एंजॉय करा दे?
1: बहुत बढ़िया
0: जी।
1: चलाई हो रही है सीखने लिए टाइम पास करना सही अपना है
0: जी जी। तो अंबा दे खटियाई करी ले तो हाँ तो हम साइड एन की नहीं है ना?
1: अंबा लग गया ना कर रही
0: जी।
1: कड़ियां
0: रोटियां ने खरा लगता था पर आजकल
1: कड़ियां रोटियां तो सुपने होई है
0: जी। सुपने होई हो ना जी।
1: हां तो
0: जी
1: हां
0: जी। ता मेघनाथ
1: जी बना दे ता कटे क्या दे बना दे
0: जी। अच्छा लुंगड़ू रसियाड़े जिड़न से बना दे अली
1: जी।
0: ता आज तो हो गुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: और पुराना गीत सुनाइए मुझे नजरे पारे पारे
0: जी। अच्छा गीत तो हाँ सुनने निंद्रे पारे पारे।
1: हाँ जी हाँ
0: जी जी। जरूर तो हम दी जिड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हम दा
1: बहुत धन्यवाद
0: जी। ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने दर्शो तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर शहां कन्ने जुड़ी सकदे कन्ने अहां कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकदे। इसी गल बात कन्ने अहां कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न, कार्यक्रम दे सफर दी शुरुआत करदे न एक प्यारे दे गीत कन्ने। गीत कन्ने अहां शुरुआत जरूर करनी है, पर पहले तो हां इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकदे। जुड़ने वास्ते जेड़ा हां दा नंबर है से तुहां सारे नोट करी लिया, नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो शो तो कर दिन शुरुआत हाँ इस गीत कन्ने, तो तुहां भी तुहां जो भी जेड़ा इंतजार जेड़ा ऐसे रहंदा है कि कालू दिया 2 बजदे न कन्ने कालू दिया हाँ इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ते न, तो इंतजार की जड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते बिल्कुल ख़त्म है। तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़िया कन्ने एक गीत तुहां तक पहुँचा देना, तुहां सारे ही इस गीत जो इंजॉय करा।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने शुरुआत हाँ इस गीत कन्ने की थी है कन्ने फिर यहाँ वापिस तो हाँ तक पूछियो ना अपनी गलबात लेकरी तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर शुरू होंदा है से होंदा है दो ते शुरू हो जाता है कन्ने 3 बजे तक जेड़ा है से सफर तो हाँ तक रहंदा है तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते तो जेड़ा इगलू प्रवेश जेड़ा आवेदन है से तुहां जरूर जेड़ा से 15 जुलाई तक करी सकते तो ये जानकारी जरूर तुहां तक पहुंचाई है कन्ने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते दिने दी शुरुआत छुट्टी दी प्यारी दी जेड़ा शुरुआत करने होंदी है तां अहां दा जेड़ा पूरा दिन बेहतर तरीके ने जांदा है। हमेशा छुट्टी वाले दिन वैसे तां हां बड़े सारे काम जेड़ा न सभी सोचे होंदे थोड़ा जिहा खुद वास्ते समय निकालना दा जेड़ा निकालने वास्ते अहां भी ये भी सोचा होंदा कि खुद वास्ते समय जेड़ा है सभी निकालना है कन्ने फैमिली जो भी समय देना है तो हाँ अपने समय जो किस प्रकार टाइम टेबल अनुसार चल देना अपने घरे दे काम कर देना किस प्रकार हाँ अपने बारा दे काम कर देना या अपनी सेहत का जेड़ा ख्याल है से किस प्रकार जेड़ा है से कर देना दर्शो तो हर कोई यही चाहता है कि यहाँ अपने जेड़ा समय है समय के अनुसार चलना समय के अनुसार चलना भी जरूरी है पर कई बार होता ना कि यहाँ काम के चक्कर च अपनी सेहत का जेड़ा ख्याल है से रखना बिल्कुल ही भूली जाते काम हाँ हमेशा करते रहते फिर भी अपना जेड़ा ख्याल है से कुछ ना कुछ यहाँ नहीं रखी पाते खुद जो जेड़ा नज़रअंदाज है से यहाँ जरूर करते हैं ना तो छुट्टी भी इंजॉय करा अपने जेड़ा काम मन सभी करा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला भी जरूर सुना दर्शो तो छुट्टी का इंजॉय यहाँ किस प्रकार ले सकते या किस प्रकार अपना समय जेड़ा से अपने कने बिताई सकते इदे ऊपर अहां जरूर गलबात करनी है तो हाँ सारे भी अपना जेड़ा सफर है से जरूर माटी दी मेह कार्यक्रम करने तय करी सकते 2 ते 3 बजे तक समय दी ओर अगर अहां अपना जेड़ा ध्यान है से लगान देना तो 2:14 जेड़ा न कार्यक्रम चोइया न बाकी जेड़ा समय है से तुहां तक है तुहां समय के अनुसार इस कार्यक्रम च जुड़िया कने जेड़ा तुहां दियां फरमाइशां न से जरूर इस कार्यक्रम च तुहां सुनी सकते तो इसी कन्ने अहां अग्गे बढ़दे न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न तुहां सारे इंतज़ार करा दे होने न कि फरमाइशां भी अहां तक जल्दी जल्दी पहुँचन कने अहां अपना जेड़ा कामकार है सभी करी लैन कने गीत संगीत जालू सुनना हाँ शुरू करी देना तो कुछ ही ना कुछ ही खुद जो भी अच्छा फील होंदा है कने हाँ अपने कम्मे पा है जेड़ा सारा ध्यान है से लगाई लैन देना।

ताशुतों तो सारे इस दुनिया ये भजन इस भजन दी फरमाई शाह जो आई हुए मेघनाथ जी दी कने से रहने वाली न दारिक दी तिना तक हाँ ये भजन पहुँचाया कने इसी कने हाँ अपनी जेड़ा गलबात पर वापिस जड़े से जरूर आते न काम का जेड़ा समय है से अगर अहाँ समय अनुसार रख दे न या दो ते तीन घंटे सिर्फ अहाँ काम करने का जेड़ा निर्णय से लेंदे न कने प्यागा जल्दी उठी करी अहाँ अपने जेड़ा काम मन तिना जो निपटाई लेंदे न तो कुथी ना कुथी अहाँ अपने समय का जेड़ा सदुपयोग है से अच्छे ने करी पाते न कने अपनी छुट्टी जेड़ा है से इंजॉय भी जरूर करी पाते न कने जल्दी जेड़ा है से शुरुआत करते न परिवार कने सारे काम जेड़ा न इकट्ठे करते न ता काम का पता भी नहीं चलता है कने थोड़ा आपस प्यार भावना भी जेड़ा से बनी रहती है साथ मिली करी जिन्ना छोटे बच्चे न तिना जो भी यहाँ काम भी सिखाई सकते तिना ते यहाँ काम भी जेड़ा से ले सकते कने किस प्रकार काम घरे का जेड़ा काम ऐसे करते न तेरे ऊपर तिना जो जरूर जेड़ा से दसी सकते कने बच्चे भी थोड़ा दिया जलू मदद करते न तो सै कुछ ना कुछ जरूर जेड़ा से सीखते न अपने माता पिता ते कने थोड़ा दिया समय जेड़ा से बच्चे कने माता पिता भी जेड़ा से बिताई लेंदे न कने बच्चे भी अपने माता पिता या फैमिली कने जरूर जेड़ा से बिताई लेंदे न कने जेड़ा दोपहर दी गल अहाँ करिए दोपहर का समय जेड़ा से चलिया वैसे भी थोड़ा दिया समय जेड़ा से मन करता कि खुद वास्ते जेड़ा से यहाँ निकालन या खुद वास्ते यहाँ रेस्ट करन थोड़ा देर रेस्ट करना भी बनता है कने खाना अगर अहाँ सोगी मिली करी खाते न या फैमिली कने मिली जुली करी खाना खा

0: ने अपना काम भी जरूर समय अनुसार जेड़ा है से करी लेंदे न। तां श्रोताओं तुहां भी अपनी छुट्टी इंजॉय करा दे होने न, कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद मैडम जी, असा तो ठीक ठाक है ना, तो सब मैडम जी ठीक ठाक है
0: जी? यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तो हाँ कुथु ते बोला दे कने तो हंदा ना क्या है जी?
1: कोठियां जलोड़ते बोले मैडम जी असा, और सुनील कुमार बोल रहे
0: जी। कोठियां जलोड़ते सुनील कुमार जी।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी सुनील जी, क्या काम कार तो हाँ छेड़िया, क्या करा दे?
1: कुछ नहीं मैडम जी, आराम कर रहा दे
0: जी। अच्छा आराम करा थी, गर्मी कितनी क्या उस टाइम?
1: तो पता खरी तेज भी है मैडम जी इस टाइम का
0: जी। वैसे भी दोपहर दस में है ना जी, इस टाइम का ज्यादा होंगी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: जी कोठियां जलोड़ थी नोई ताजी?
1: बस मैडम जी नोई ताजी क्या, बस यही है धुप्पे भी हो
0: जी, कोई नोई ताजी नहीं है
1: बस यार, लोग खटिया करा दे
0: जी। जी अच्छा, अंबा दा सीजन चल रहा है तो खटिया करने का जेड़ा समय ऐसे थोड़ा देर चल रहा है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो तुहां भी करी रखी हैं?
1: बस कर दे थोड़ी थोड़ी मम्मी मम्मी ही
0: जी। जी
1: हाँ जी
0: जी, चलो अच्छी गल है ना जी। नेचुरल चीजा होनी है, थोड़ा दिया इन्हें चीजा का फायदा भी लेना चाहिए, पर कुछ ना कुछ हाँ इन्हें जो नुकसान भी जरूर पहुंचाते ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: जी खटियाई अपनी जिहड़े से हां जो मिली आंदी फ्री
1: मिली आंदी मैडम, पर देखा ना मैडम जी बाजार च लेंगे ना तो मिक्स हो जांदी मैडम जी, कहना ना चज्जी दी खटियाई हुंदी ना कुछ मैडम जी, पैसे भी जा लगने जी, ये तो अपनी हत्थी दी गल है ना। इत्थों
0: जी इत्थों तो सब कुछ अपने हत्थे ने ही सारा काम करना, कने खुद पर भरोसा भी हुंदा ना जी। फिर अम्बुआ बनना भी स्टार्ट होई जाना जी। जी अलग ही जेड़ा है से प्रकृति यहां जो बड़ा कुछ तेड़ा है से दिन दी है, पर अहां किस प्रकार प्रकृति कने व्यवहार कर दे से यहां पर निर्भर करता है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो सुनील जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: शेर सिंह दी आवाज जैसे गाना है ना, कर मान बंदे एक दिन मिट्टी में मिल जाना।
0: जी जरूर ये गीत ये भजन तो हाँ तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तो हाँ दा।
1: धन्यवाद मैडम जी। नमस्ते मैडम जी।
0: जी तर्शो तो बढ़ दिन अपने कार्यक्रम दे सफर जाके कने अगली फरमाइश तो हाँ तक पहुँचा देना।

दर्शकों ये गीत तुह सारे सुनिया कने तुह सारे उन्हें सोचने पर मजबूर होने न कि इस गीत की फरमाइश जहां जो कुते आई हो है वेट करा जरूर हाँ तुह तक पहुँचाना है कि इस गीते की फरमाइश अहाँ जो कुते आई हुए इस गीते की फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है पवना जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तिना तक अहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने तुह सारे भी इंजॉय की जिंदगी जिंदगी के बारे च हमेशा अहाँ जिहड़ा गलबात है से करते रहते हैं गीता दी अहां गल करिए तां गीता च क्या लिखिया तुहां सारे जो ही पता है जिंदगी च जेड़ा भी होंदा है से सब कुछ अच्छा ही होंदा है पर अहां हमेशा यही सोचते हैं कि जिंदगी जिहड़ा से हमेशा अहां जो नए मोड़ पर जिहड़ा से लेकरी जांदी है जिहड़ा बुरा वक्त है से अहां जो हमेशा बुरे वक्त दी जिहड़ा कीमत है से समझाई करी जांदा है कि बुरा वक्त जिहड़ा से अहाँ किस प्रकार अप खुद जो असहमत रखते न या बुरे वक्त जो अपना जिहड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखते न जलू बुरा वक्त होंदा है तलू अहाँ जो ये वक्त ये सिखाई करी जाता है कि अपन का जिहड़ा प्यार है या अपनापन है से अहाँ जो कुछ ना कुछ बुरे वक्त जिहड़ा से सबक दे करी जाता है अगर अहां दा बुरा समय चलिया है तो अपने भी साथ जिहड़े से छड्डी करी चली आते हैं तो जरूर वक्त जिहड़े से अहां जो बड़ी वड्डी जिहड़ा सीख है से दे करी जांदा है कने जालू अच्छा समय चलिया होंदा तो तालू अहां अहां दे जिहड़ा सारे अपने जितने भी हैं से अहां दा जिहड़ा साथ है से जरूर दिंदे न तो अगर अहां दा कोई दुख च साथ नहीं दिंदा है तो कुछ ना कुछ वक्त जिहड़े से अहां जो कुछ ना कुछ सिखा दे वक्त का जिहड़ा अनुभव है से हमेशा हाँ जो हर दिन कुछ ना कुछ जिहड़ा है से जरूर सिखांदा है दर्शकों तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ी सकते कने अहां कने गलबात जिहड़ा है से जरूर करी सकते गलबात करने वास्ते जिहड़ा स्टूडियो का नंबर है से तुह तक पहुँचांदे न नंबर है 701-8117091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने अहां जिहड़ा गलबात लगाई हुए से लगाई हुए कि छुट्टी संडे वाला दिन किस प्रकार जिहड़ा से इंजॉय करना हाँ कने तुहां करी भी ले आउणा है कने अपने जिहड़ा काम कारण सभी करा दे आउणे न तो छुट्टी वाला दिन बेहतर खास है अपनिया कन्ने पर अपनिया कन्ने हर समय अगर अहाँ साथ हैं साथ ताई हैं जलू अहाँ पूरे दिले ने पूरे मने ने अगर अहाँ कोई भी काम कर दे न ताई से काम जल्दी होंदे कंती इस कम में करने दा भी अलग ही जिहड़ा अंदाज है से मिलता है कई बार अहाँ ये सोची करी चलते न फैमिली च हमेशा क्या चाहिदा होंदा तो सारे जो ही पता है कि फैमिली च प्यार भावना एक दूए अंदर प्रेम भावना जिहड़ा से होना ज़्यादा जरूरी है अगर अहाँ कोई काम करा दे न अगर अहाँ तिस कम में जो मिली जुली करी कर दे न तो तिस कम दा जिहड़ा से पता नहीं चलता है कने आपस च प्रेम भी जरूर बढ़ता है क्योंकि जलो आपस च अहाँ काम कर दे न बातचीत कर दे न तो कुछ ना कुछ जिहड़ा अहां दे रिश्ते न तिना च हमेशा प्यार जिहड़ा से बनिया रहिंदा तो काम करना भी जरूरी है कने आपस च प्रेम भावना रखना भी अहां वास्ते जरूरी है तो इसी कने अहां थोड़ा दिया अग्गे बढ़दे न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचांदे न

का श्रोताओं तो सारे ही सुना दे इस प्यारे दे भजन जो ना कर मान बंदिया एक दिन मिट्टी विच मिल जाना। का श्रोताओं इस भजन दे बोल जेड़ा न से बड़े प्यारे न, कने अगर तुहां ध्यान ने

श्रोताओं तो सारे ये भजन इंजॉय किया कने इस भजन की फरमाइश हाँ जो आई हुए सुनील जी की कने से रहने वाले ने कोठियाँ जलोड़ ते श्रोताओं इस गीत च अगर तुहां ये गीत ध्यान ने सुने होने तो तुहां जरूर इस गीत से सीखी लिया होना है कुछ ना कुछ ना कर माण बंदे आ तो श्रोताओं ना हाँ जो पैसों का मान करना चाहिए ना अपने कपड़े का मान करना चाहिए क्योंकि एक दिन सब कुछ जड़े से इतों ही रह जाना है पर फिर भी अहाँ इंसान जड़ा ना हर चीज़ का मान करना जड़े से शुरू हो जाते तो सारे जो ही पता है ये जड़ा धन दौलत है सभी अहाँ करने नहीं जानी है जड़ा अहाँ के कपड़े न सभी अहाँ करने नहीं जाना है अच्छा जड़ा बोल चाल है ना से अहाँ अपने अंदर रख के या अच्छा व्यवहार अपने अंदर रख के या अपने माता पिता का मान सम्मान करके कने बड़े जड़ा बुजुर्ग हैं तिना का मान सम्मान करके यही सब कुछ अहाँ वास्ते धन दौलत है यही अहाँ वास्ते सब कुछ है पर समझना तुहदा काम है कने अगर अहाँ थोड़ा जहा सोच विचार करिए तो इदी पर सोच विचार करना भी अहाँ वास्ते जरूरी है तो श्रोताओं तुम सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने इस कार्यक्रम का जड़ा सफ़र है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक इसी सफ़र कन्नै अग्गें बढ़दे न कन्नै थोड़ा जिहा कार्यक्रम का जिहड़ा माहौल है से चेंज करदे न

दर्शकों तुह सारे ये गीत इंजॉय किया कन्ने इस गीत कन्ने जरूर अपना जेड़ा घरे का माहौल है सभी थोड़ा जहा चेंज किया होने हूँ तुह सोचा दे होने कि किन्ना चेंज किया होना। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है कन्ने जालू पसंद वाला गीत तुह तक अहाँ पहुँचाइंदे न तो तुह जो भी अच्छा लगता है कन्ने फिर मन करता है कि थोड़ा जहा डांस है से करी लिए तो ज़रूर डांस करना भी ज़रूरी है। खुद जो खुश रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है से तो हाँ सारे जो ही पता है क्योंकि जिंदगी का सफ़र है। ये सफ़र अगर अहाँ खुशियाँ ने बिता दे तो अहाँ का ये सफ़र बेहतर तरीके ने जाता है। तो ये गीत ये फरमाइश अहाँ पहुँचाई है इंदू जी तक ने से रहने वाले ने सिद्धवाड़ी से। इसी कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचानी है

अगले जड़ा शो था ना, सभी जरूर इंतजार करा देना कि यहाँ दी जड़ा फरमाइश है से दिना तक पहुँचे कने। अहाँ भी जरूर इंतजार जड़े से ज़्यादा नहीं करवाना है, तो चल देना सुन देना अगली फरमाइश।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर यह तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो इसी कन्ने आज हाँ जेड़ा गलबात करा देन से करा देन कि संडे की जेड़ा छुट्टी है से किस प्रकार हाँ अपने कन्ने जेड़ा इसे एंजॉय करी सकते कन्ने थोड़ा दिया संडे जो मौज मस्ती जेड़ा मौज मस्ती है तिहा भरा किन्ना जेड़ा इसे बनाई सकते क्योंकि छुट्टी का जेड़ा दिन है से सारे जो ही याद आंदा या याद रहा कि कालू दिया हंदी जेड़ा छुट्टी है से आंदी है कने कालू दिया हाँ इंजॉय जेड़ा इसे कर देना कने अपने जेड़ा काम कार है सभी जरूर कर देना थोड़ा दे आगे बढ़ देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना तो हाँ सारी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा।

मेगाहर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस गीत दा जिड़ा एंजॉय है से जरूर ले देना। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है सनी जी कने से रहने वाले ने स्कोते तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी तो जरूर अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखा कने छुट्टी वाला जेड़ा दिन है बाकी जेड़ा समय जेड़ा से बचिया उसका भी इंजॉय लिया अपने कने अपने जो प्यार दिया कने अपने स्वास्थ्य का जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा। गर्मी के मौसम च अपना जेड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत होंगी समय अनुसार पानी पिया क्योंकि पानी जेड़ा है से अहंदी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है तो इसी कने तो सारी अपनी ऋण दो शशियु दिया अनुमति ये सफ़र जेड़ा है सेहत ही संपन्न होंगे हमेशा खुश रहा हंसते रहा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनाते रहा।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए जीजीआई के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। जीजीआई आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।

0: तू पहले जाके दूसरों की बीवियां देखो।
1: देखने तो देती नहीं।
2: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
3: अरे बाप रे।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
3: देखने तो देती नहीं।
4: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
2: अरे बाप रे।

नमस्कार श्रोताओं, तुसे सभी हो मेरा प्यार भरा नमस्ते हा। हूँ सचिन कपूर हा, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा। सभी होने आले रा तहे दिल थो स्वागत करनो अभिनंदन करनो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच। तो सभी इस समय ट्यून कर रहा है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तक देन श्रोताओं, तो है सब उम्मीद कर रहा हूँ सब खरे भुने राजे बाजे भुने। चलिए जी कार्यक्रम मंच, सभी पहले गीत हुन लेना। चाह तो तुम भी कुछ दे दे बल्लू कर दे कि गीत हुन लेंदे ने, लेकिन चलिए शो तो अगर चाह हा ना तो फिर चाह जो मकाना न चींदा और चाह जो चाई होगी कि असो हुन न चींदा है ना। तो सभी भी चाह कि पहले गीत हुन ले, ताइए आगाज कर देन कार्यक्रम रहा इस गीता सोगे।

बहुत आनंद आगुना सब भी जो गीत हुनने वा श्रोतों तो सब ये ट्यून कर रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव फोनो कर देने अपने अपने वीडियो सेट मा हिंदी अपनी गप्पा आइए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं श्रोतों आज असू गलबात करने हाँ बुजुर्गा रे बारे अंदर की आखिरकार बुजुर्गा रा ख्याल किया सो असू की करे रखना हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बड़ा ज्यादा जरूरी है श्रोतों की बुजुर्गा रा ख्याल किया सो है की करे रखना है ना सिर्फ तीनों त्राई टाइम मेरी रोटी देना या त्राई टाइम मेरा खाना दीना ही तैयारी सेवा नहीं है शोतों और भी बहुत चीज अगे ने सो है कर सकते हैं अपने बुजुर्गा वास्ते बशर्ते अगर करना चाहता अगर ना करना चाहता फिर क्या बल ले सकते हैं ना और दिल मा इच्छा बुने चिंदिया सो जज्बात बुने चिंदे सो संस्कार बुने चिंदे तो सब काम किया सो बुझ गंदा टाइम ना लगो या टाइम नहीं है ये तो सिर्फ एक बहाना है शोतों समय सभी ले 24 घंटे रहे बंदा सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ही निंदे घर अंदर तिन्या वास्ते समय कढ़ना इंदा दायित्व और सो जरूरी भी हा तो चलिए दस ले जरूर लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में हुन दिन पहले गीत

तशोतो आत्मो के फिर स्वागत है सभी वह गीता थो बाद बुजुर्गा रिया है गलबात लौरे था बुजुर्गा भी देखभाल करना त्यारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो प्राथमिकता देना है सभी पहले था त्यारा मानसिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है त्यारा शारीरिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है और इतियो सब थो पहले इम्पोर्टेंस देना किया सोइंदा दायित्व बनता है शतो तिन्यो सक्रिय और फिट रहने वास्ते किया सो तिन्यो प्रोत्साहित करना तिन्यो मोटिवेट करना ये इंदा फर्ज बनता है शतो नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी इंदा ही फर्ज है तिंजरा बलना सो की असु रेगुलर स्वास्थ्य जांच वास्ते की असो बच्चा लेकर चल या फलाने लेकर चल ए इंदा फर्ज बनदा कि तिंजो है लेकर गान उचित पोषण दीन तिंजो शो तो सामाजिक रूप थो सक्रिय रखना और त्यारी व्यक्तिगत जागरूकता जो समझना और तिंजा मन समझ बनाना शो तो तिंजो अंडरस्टैंड करना ये भी सिर्फ और सिर्फ इंदा ही दायित्व है ना कि त्यारा कि सो बल ले आंसू करना इस भाड़ा मत बैठा शो तो फिलहाल कार्यक्रम जो है बढ़ेंदे और सभी जो सुनंदे ने गीत

कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप मौके फिर सभी होने वाले रा। तो सब मैसेज कर सकते हैं 1478889 पर। फिलहाल कार्यक्रम जो बढ़ंदन हगो और बुजुर्ग रिया है गलबात लौरे थे शोधों, तो चलिए थोड़ा करिए और इस टॉपिक जो हगो बढ़ंदन। सो बुजुर्ग सच में बहुत दिल थो आशीर्वाद दिन दे, दिल थो खुश बुंदन। अगर त्यां रह तो है तिन्यो टाइम मारे तो है नुहाई दिन देने, टाइम मारे त्यां रह कपड़े धोई दिन देन, टाइम मारे तिन्यो खान पान, टाइम मारे तिन्यो अगर तुसो लगदा किन दे बुजुर्ग के न सो थोड़ी करी एक्सरसाइज करी सकते हिन, तो त्यां रे एक्सरसाइज कराई करे तिन्यो शो तो धुप्पा बखाली करे भी कजो की धूप भी किया सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुंदे सीजन वाइज। ता इस सब चीजा का ख्याल किया सो रखना इनदा दायित्व इनदा कर्तव्य महत्वपूर्ण अंग हा बुजुर्ग शोतो इनदे परिवार मंच है ना जी। ता शारीरिक देखभाल की कर रखने शो तो है सोचो कर दें ता रोजाना तीनो व्यायाम करा योग करा, बुजुर्गा जो व्यायाम और योग वास्ते की सो प्रोत्साहित करा तीनो सोगी करा इवन की एक्सरसाइज है ना, और तीनो फिट रहने वास्ते की सो बल्ला शो तो है ना बीमारी थो दूर सुस्ता ही रह सकते हैं जहने एक्सरसाइज कर ले, जहने सो अच्छा फल फ्रूट खा ले, जहने सो शो तो पूरे तरीके हो गए की सो योगा कर ले व्यायाम कर ले थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं, तसो कर ले तासो बीमारी तो दूर रह सकते हैं। बहरहाल चल दें और कार्यक्रम में हुन देने गीत।

कार्यक्रम सचिन कपूर सो गए हूँ गर्दन तो है हिंदी अपनी गपा हक मौके फेरे बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सभी हुनने वाले रा सभी श्रोता गण रा और सचिन कपूर रा कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा हूँ गर्दन और आज है कार्यक्रम में श्रोताओं टॉपिक लियो रहा बुजुर्गारी देखभाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेरा बुजुर्ग वास्ते अच्छा और ताजा खाना के असो तीनो खुआना चिंता है ये ना कि वात कनी रोटी बचो रही सो सेकी करी दे तेजी काम निपटाई लो कि कर खदाम लग रही और बुजुर्ग ना खंदे था ब्याकनी रोटी है या ब्याकना कुछ प्यूरा बात सब्जी तो सो सेकी करती देता है ना बुजुर्ग वास्ते खास कर सो तो तुम्हें अपू तो कर लिया कोई सुने को तो है डाइजेस्ट कर सक दे तो है काम करू कर दे बुजुर्ग बेचारे आग जगह बेखुरे बंदे ना तो जो कि तीनिया सारी उम्र तक मेहनत कर रहे बंदे तो अच्छा खान पीन दीना के असो इनका दायित्व बनता है प्रोटीन युक्त संतुलित आहार तीनो दिन छोतो और फास्ट फूड तो वैसे बुजुर्ग इन देर देने और तुसु भी लत लवानी बुजुर्गो है ना कई सियाने इंदे बोलते कि हां ले इंदे है तो खाई लेंदे ने है तन्ना खाना फास्ट फूड बिल्कुल ना खाना और प्रदूषण तो बचे करे रहना ज्यादा प्रदूषित जगह के असो बुजुर्ग जो ना लेकर जाना छोतो स्वास्थ्य जांच के असो नियमित रूप थो डॉक्टर थो स्वास्थ्य जांच करवाओ करा छोतो उचित समय में किया सो तीनो दवाई किया सो दिच्छु करा और रेगुलर रूटीन चेकअप किया सो बुजुर्ग रख रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहरहाल चल दिन थोड़ा करे और हगो और तो है हूं कर दिन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हर्चे सचिन कपूर सोगी।

सामुदायिक वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है जब ये ट्यून कर रो रहा हूँ सचिन कपूर रातुंद अपना आरजे वेड़ी जो की हया कार्यक्रम जो हगो ब्रंदन श्रोतों और मानसिक और सामाजिक देखभाल रे बारे में गल बात कर लेंदे न सक्रिय जीवन श्रोतों तिया सक्रिय और व्यस्त रहने वास्ते की आ सो प्रोत्साहित करना है ना कहो की ये मानसिक स्वास्थ्य जो की आ सो बढ़ावा दिंदा हा अगर सो बुजुर्ग इंदा व्यस्त रहते जो सो काम कर सकते न मतलब है ना तिया सो अगर काम कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी गलत यारा मानसिक स्वास्थ्य के इतों ठीक रहता है श्रोतों शरीर भी किया सो थोड़ा बहुत फिट रहता है। सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते अकेलापन जो काम करना है बुजुर्ग रे भावनात्मक भलाई वे वास्ते की इतनी परिवार और दोस्त हो गए की सो जोड़ी करी रखना है। कोई सियाना के इनके घर है श्रोतों सो अगर तुसो लगता की अकेला फील करू करता तो तस्यो अपू होगी जोड़ी करी रखा या फिर आस पड़ोस में कोई और सियाने इनते तिन्यो आपस में किया गलबात तैयारी भुआ इस गल्ला रे खास ख्याल रखना अगर सो ना गलबात करने लायक ही या ना इन्हें गाने लाइक ने तो है किया सो अपने बुजुर्ग होगे लगातार संपर्क में रहे या तिन्यो अकेलापन किया सो फील मत कराश हो तो कार्यक्रम जो थोड़ी करी और हगो बढ़न देन और हुन देने प्यारे दे गीत।

शो तो बहुत मजे चुक गीता हुए लेकिन जो आज का टॉपिक है अभी बहुत मजेदार है। मेरे दिल होगी लगुरा ये टॉपिक है शो तो बाकी मैं जो की जो बुजुर्ग सो इनकी पहचान है इन शो तो बुजुर्ग वास्ते मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है ना। मानसिक शांति की है शोतों सो भी बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते। सो अपने मनरी शांति होगी क्या ना सो रैन इट्स सो इम्पोर्टेंट है ना। घर अंदर कला कलेश की सो ना भूना चाहते हैं। अपू मियाँ बीबी भी लड़ाई है तो सो इन बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं या बच्चे भी लड़ाई है तो सो बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं। तीनों जितना भी हो सकता तूना मानसिक स्वास्थ्य के सो त्यारा ठीक रहे तीनों या एर और रिटेंशन आ गया ना सोना भून सो तो यह गल विशेष ध्यान किया सो जरूर रखना तो है सब। आइए कार्यक्रम जो होगा बढ़ा दे और कार्यक्रम में लेकर चल दे तुझे सब बीजो इस प्यारे दे गीत तारी किनारी।

श्रोता भैया कार्यक्रम इस समय तो हुण करदे ने सचिन कपूर सोगी इंदी अपनी गप्पां। श्रोता अपने घर में बुजुर्गों की देखभाल जरूर करन, है ना। घर में बुजुर्गों की देखभाल करदे ने अगर तो है श्रोता तो सब घर घर ना मंदिर बनी सकता है और मंदिर बनी गंदा है जहां तो वह बुजुर्गों की तड़ी देखभाल करदे ने और तीनों बढ़िया तरीके होगी कि सो रखते हैं इन श्रोता, है ना जी। इनके बुजुर्ग जो कि सो समय समय में मैं दसो दुआ दिया चिकित्सा देखभाल रा प्रबंधन त्यारा करा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पौष्टिक भोजन प्रदान तीनों का रश होता हूँ। शारीरिक गतिविधि जो वास्ते तीनों प्रोत्साहित करा रश होता हूँ, है ना। संगीत तीनों होना अगर तीनों पसंद आता संगीत तीनों होना, है ना। नचना की है सो तीनों बल्ला की आम दुई दुई पराठी लाई लेंदे या बाबा दुई दुई पराठी के सो लाई लेंदे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। घर मन जो बुजुर्ग रहे कर दें तैयारी देखभाल की सो करना बहुत इंपॉर्टेंट है असू सभी वास्ते श्रोता हूँ। तो श्रोता हूँ अभी आऊँ सचिन कपूर ले लें तो थो इजाजत और गंदे गंदे बस ये बोलना चाहनो जो हमेशा बोलो कि बुजुर्गारी सेवा करते रहे और आज का टॉपिक भी था इति पर है और आज का ये मेरा कार्यक्रम की असु इन बुजुर्ग पर हाश होता हूँ था इन बुजुर्ग जो समर्पित है प्यारा दे कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा आर जे सचिन कपूर री तरफ था और रेडियो गुंजन री तरफ था। सो प्लीज टेक केयर अपने बुजुर्गारी की सो ख्याल रखा टेक केयर करा बुजुर्गारी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही ना सुवास्त है इया था श्रोता हूँ घर किया सो घर ना मंदिर बने गंदा अगर बुजुर्गारी सेवा है तस तरीके होगी और मन चित लाई करी कर दे हिंता इन शब्द था लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। चौदह सौ से ज्यादा नए पद भरने को कैबिनेट की मंजूरी। गांव किसान, महिलाएं और युवा बनेंगे विकसित भारत की ताकत। सरकारी स्कूलों में 11,000 शिक्षकों के पद खाली। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को सुक्खू सरकार देगी टैक्स फ्री प्राइवेट बसें। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने नई भर्तियों का पिटारा खोला। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों में 1400 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इसके तहत मंत्रिमंडल ने भर्ती निदेशालय के अंतर्गत वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पंचानद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 का संकल्प विषयक वार्षिक व्याख्यान को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि गांव, किसान, युवा और महिलाएं देश के विकास की यात्रा में सशक्त भागीदार बने, इससे ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। उनका कहना है कि मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधुनिक कृषि, कौशल विकास और उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत की नींव है। प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले मर्ज किए गए सरकारी कॉलेजों में नए दाखिलों पर रोक लगाने का फैसला किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन कॉलेजों में नए प्रवेश नहीं होंगे, जबकि वर्तमान में अध्ययनरत 319 विद्यार्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित सरकारी कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को कदम उठाए हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 11,000 पद रिक्त हैं, जिनमें से लगभग 3400 पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है। हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में रिक्त पदों और भर्ती प्रक्रिया की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन सेवाओं को विकसित करने को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक और डीजल की प्राइवेट बसें खरीद करने वाले युवाओं की सरकार दिल खोलकर आर्थिक मदद देगी। कैबिनेट में निर्णय हुआ कि अगर कोई युवा ग्रामीण क्षेत्रों के रूटों के लिए इलेक्ट्रिक प्राइवेट बस की खरीद करता है तो सरकार उसे 50% सब्सिडी देगी। अगर 1 करोड़ की एक इलेक्ट्रिक बस आती है तो सरकार उसमें 50 लाख की सब्सिडी देगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में प्रवेश किया प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने विभिन्न बीए, बीएड, बीए

एमएससी बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3,758 पंचायतों में हाल ही में चुने गए प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह तय हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को 15 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद पंचायतों में गांव की संसद कामकाज संभालेगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये नीति भूमिहीन परिवारों तथा लघु एवं सीमांत किसानों के मानवीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो लंबे समय से आवासीय कृषि एवं बागवानी के लिए सरकारी भूमि पर गुजर बसर कर रहे हैं। प्रदेश के 158 सरकारी CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की तैनाती को लेकर सरकार के सामने नया प्रशासनिक पेज खड़ा हो गया है। कैबिनेट बैठक में इन स्कूलों के लिए सेवारत शिक्षकों की मेरिट आधार पर नियुक्ति का मामला चर्चा के केंद्र में रहा। मंत्रियों ने शिक्षा सचिव की ओर से दी गई प्रस्तुति का विरोध करते हुए विभिन्न सुझाव और आपत्तियां दी। इसके बाद सरकार ने अंतिम निर्णय फिलहाल टालते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। नागरिकों के मौलिक अधिकार केवल किताबों तक सीमित न रहकर इन्हें धरातल पर उतारना भी आवश्यक है। देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए देश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को लागू किया गया है। ये बात शनिवार को धर्मशाला में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नोंग मैकापम कोटेश्वर सिंह ने कही। उपभोक्ता मामले विभाग ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकेजिंग आकार निर्धारित किए हैं। ये कदम उपभोक्ताओं को विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की तुलना करने में मदद करेगा। इससे वे सोच समझकर खरीदारी के निर्णय ले पाएंगे। विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी ढांचे के तहत ये प्रावधान किया है। विभाग ने खाद्य तेलों और वसा की शुद्ध मात्रा के लिए प्रक्रिया में संशोधन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा को लागू करते हुए शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। सरकार ने SMC शिक्षकों, मिड डे मील वर्करों, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों, वाटर कैरियरों और IT शिक्षकों के मानदेय में ₹500 प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण को अधिक प्रभावी और साक्ष्य आधारित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट जारी की जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच शुक्रवार को तनाव एक बार फिर सीधे सैन्य टकराव के बेहद करीब पहुंच गया। दोनों पक्षों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास एक दूसरे पर सैन्य हमले किए। राजकीय TGT कला संघ ने 16 जून से डोर टू डोर जनगणना शुरू होने से पहले CBSE स्कूलों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की है। इसके अलावा 749 TGT को प्रवक्ता और 600 TGT को हेडमास्टर प्रमोशन देने हेतु DPC किए जाने की भी मांग की है। ये मांग राजकीय TGT कला संघ ने शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और स्कूल शिक्षा निदेशक से की है। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि 749 TGT में डीम्ड रेगुलर शिक्षक सितंबर 2025 से अब तक प्रमोशन को तरस रहे हैं। अब एक नज़र मौसम की ओर। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मिली राहत अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। मौसम साफ होने और तेज धूप निकलने से प्रदेश में एक बार फिर गर्मी के असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। 8 और 9 जून को अधिकांश मैदानी तथा मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 जून से प्रदेश में मौसम करवट ले सकता है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से निचले क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों तक बारिश की संभावना बन रही है। 11 और 12 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

गुड इवनिंग धर्मशाला। जी हाँ, कार्यक्रम हो गया है शुरू 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जी कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, लेकिन हम तो आपके घर में आ चुके हैं रेडियो के जरिए, इस मेरे प्यारे से दोस्त माइक के जरिए। और दोस्तों, ये तो हम नहीं जानते कि आपको अच्छा लगता है कि हम आपके घर में पहुंच गए या नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जो भी है भाई, हमारा तो ये काम है तो हमें तो करना ही है। वैसे भी 2 घंटे रहेंगे आपके साथ अब से लेकर के रात्रि 8 बजे तक, तो शुरू होती है हमारी संध्याकालीन सभा। और ये तो आप जान ही गए हैं कि आज के इस शो में कौन है रेडियो होस्ट। जी मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: तो आज है सात। क्या, अरे हम तो अभी पिछले महीने में ही घूम रहे हैं। मई मई मई खत्म ही नहीं हो रहा है दिमाग से। आज 7 जून है। जी हाँ, जून के महीने में पहुंच चुके हैं हम। मैं क्या करें, बस ऐसे ही करते करते दिन गुजर जाते हैं और कब हमारी ज़िंदगी के जो दिन हैं वो चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। परंतु बड़ी बात ये है कि हमने हर दिन को कैसे जिया वो ज़रूर पता लगना चाहिए, और उसकी यादों में हमें खोना भी चाहिए अगर वो अच्छी हों तो। कहते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को संजो संजो के रख लो और जो कुछ गलत सलत हुआ है उसको छोड़ दो, तभी तो ये ज़िंदगी आगे चल पाएगी। वरना आप पुरानी अतीत की यादों में खोए ही रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो यानी कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट में, आज में। आज में चलिए हम भी जीते हैं। और आज बता दूं आपको क्या क्या है। आज आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय या विश्व दिवस यूं कहूं कि आज है खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, मतलब हम जिंदा नहीं रह सकते। वो है खाना, खाद्य। तो उसकी सुरक्षा पे बात जरूर होगी कार्यक्रम में। फिलहाल सबसे पहले कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के

पहचान तो वैसे आप लोगों ने मुझे लिया ही है। बता देती हूँ फिर से एक बार कि मैं हूँ ज्योति पठानिया। और मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ आज आपको, अभी आगे चलते जाइए कार्यक्रम में, आपको मैं रीज़न बता दूंगी इसका बड़े स्पष्ट रूप से। और ये जो चैनल है वो है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। चना जोर गरम गीत आपने अभी सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था बाबू। श्रोताओं अब कर लेते हैं मौसम के बारे में बात। तो मौसम की जानकारी कुछ ऐसी है कि इस समय मुझे तो दिखाया जा रहा है 19 डिग्री सेल्सियस बाहर तापमान है। और ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 60% ह्यूमिडिटी भी है, यानी हवा में नमी भी 60% है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बारिश कभी भी हो सकती है। जी हाँ, जब मैं घर से निकली थी ना तो मैंने पहाड़ों की तरफ जब नजर डाली, खास करके अपनी धौलाधार की वादियों की ओर, मतलब पहाड़ियों की ओर, जहां पर विराजमान होते हैं हमारे इंद्रनाग देवता जी, पता है वहां पर मैंने क्या देखा? वहां पर सारी पहाड़ियों के ऊपर जो बादल हैं वो उमड़ घुमड़ के मंडरा रहे थे, काले काले से बादल। तो वहां पर तो बारिश शुरू होने वाली थी, इसमें तो नो डाउट है, लेकिन यहां तक कब पहुंचेगी या पहुंचेगी भी या नहीं वो नहीं पता है। तो भाई ये धर्मशाला का मौसम है, इसमें हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे आपने देखो, वो मौसम से जुड़ी हुई बात तो नहीं है, वो तो प्रकृति है, नेचर है, नेचर का खेल कुछ भी हो सकता है। आपने देखा था ना वो जो बड़ा वाला भूचाल आया था, हम तो उसको बड़ा ही मानते हैं क्योंकि एपी सेंटर 18 किलोमीटर दूर था सिर्फ। और मौसम को लेकर के जब हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ का मौसम बड़ा बेईमान है, तो भाई कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल भी आता है ना कि कहाँ से आ गए ये बादल।

और सभी श्रोताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी आज किसी ना किसी खास वजह से अपना कोई ना कोई खास दिन दिवस मना रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो।

जी श्रोताओ, इस गाने में जो बदरा है ना, बादल का आना और आंखों की कजरा यानी काजल का बह जाना नेहा के दिल के दर्द, अकेलेपन और आंसुओं को दर्शाता है। केजे यशोदास की गंभीर आवाज और हेमंती शुक्ला की शास्त्रीय ताने इस गीत को भारतीय सिनेमा के बेहतरीन शास्त्रीय गानों की श्रेणी में खड़ा करती हैं। और श्रोताओं, जिन श्रोताओं के घर के आसपास में ये बादल छा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मैं घर से चलने लगी थी तो बादल छा गए थे, तो वो लोग ज़रूर इस गीत के साथ कनेक्ट

जी, तो 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है दोस्तों, कार्यक्रम में बहुत कुछ होना अभी बाकी है, बस बने रहिएगा हमारे साथ। ना हम अपनी चेयर छोड़ करके कहीं जाएंगे और ना आपको जाने देंगे, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ कि आप बने रहेंगे हमारे साथ, है ना। और अगर कहीं जाना भी होगा तो कम से कम अपने रेडियो सेट की जो वॉल्यूम है वो लाउड कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से लाउड करने की जरूरत पड़ जाए। नहीं, अगर हम यहाँ से लाउड करेंगे तो आपके रेडियो सेट्स पर हमारी आवाज़ फटेगी, हमारी आवाज़ बड़ी अच्छी सी मधुर मधुर सी आपके कानों तक जानी चाहिए। चलिए आते हैं हम मुद्दे पर। आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को दूषित और असुरक्षित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूक करना और खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना भी होता है। खाद्य जनित बीमारियों को रोकना, उनका पता लगाना और खाद्य पदार्थों के उत्पादन से लेकर के उपभोग तक स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखना, देखो कितना लंबा प्रोसीजर है ना ये।

शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2018 में संकल्प पारित करने के बाद। और पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था।

या कोई भी ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर हमें किसी बड़े से मिलने जाना हो तो फिर हम उनके लिए क्या लेके जाएं? तो उनके हिसाब से हम सोचा करते हैं, है ना। कोई सामान ले जाएं या फिर कुछ खाने पीने की ऐसी वस्तु ले जाएं जो उनको पसंद हो।

और भाई हमारा भी मन जो है ना वो नाचने लगपड़ा है इस गीत को सुन करके। मन तो कर रहा था ये गीत ख़त्म ही ना हो, बस ऐसे ही हम इसे सुनते चले जाएं। लेकिन आपको बता दूं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 6:30 हो चुके हैं और ये समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का। आपसे बिछड़ना ना एक पल के लिए भी अच्छा नहीं लगता हमें, लेकिन ये क्या करें, अंतराल भी ज़रूरी है। लीजिए सुनिए क्या कहता है अंतराल।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जी श्रोताओं, छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हो गए हैं, करेंगे आपसे बातचीत। अभी आपने आखिरी वाली बात सुनी ना, पीएम सूर्य घर वाली, और कुछ छतों की बात भी सुनी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कल था विश्व हरित छत दिवस, यानी कि अपने घरों की छतों पर आप ये जो सौर ऊर्जा लगाते हैं, इसके साथ साथ में अपने घरों की छतों को ग्रीन भी बनाइए। कैसे बना सकते हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं, उसके बारे में हमने कल बात कर ली है, आगे आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। लेकिन छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। छतों पर ज़्यादा गमले या ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें तो आप रख नहीं सकते, वो अपनी छत की कैपेसिटी के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि छत हरी भरी नज़र आए। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात हम कर रहे हैं। अब खाना आप चाहे जैसा भी खाते हैं, वेज नॉन वेज जो भी आपके मेन्यू में है, होता है और आपके टेबल तक पहुंचता है, फिर उसके बाद आप उसे लेते हैं, अपने पेट तक पहुंचाते हैं, इस सारी प्रक्रिया में मतलब जहां पर वो बनता है, फिर पैकिंग होती है, फिर वो आप तक पहुँचता है, फिर आपके पेट तक पहुँचता है, उस सारी प्रक्रिया में वो शुद्ध होना चाहिए और खाद्य मानकों के ऊपर खरा उतरना चाहिए। और आज की का जो दिवस है वो भी, उसका जो उद्देश्य है वो भी इसी बात पर ज़्यादा जोर देता है। फिलहाल बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर।
5: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

भारत में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और वैश्विक स्तर पर WHO FAO इसके लिए कड़े नियम और निर्देश तय करते हैं। मुर्गियों को पालने वाले फॉर्म में साफ सफाई यानी सैनिटेशन का कड़ा ध्यान रखना होता है। ताकि संक्रमण ना फैले और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं मुर्गियों को बेवजह एंटीबायोटिक्स दवाएं देने पर सख्त पाबंदी होती है क्योंकि इससे इंसानों में भी एंटीबायोटिक रेजिडेंस यानी दवाओं का बेअसर होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और कटने के बाद चिकन को तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना अनिवार्य है ताकि बैक्टीरिया ना पनपें। और कच्चे चिकन को कभी भी पके हुए भोजन या सब्जियों के साथ नहीं रखना चाहिए, इसके लिए अलग चॉपिंग बोर्ड और चाकू का इस्तेमाल करना होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कच्चे चिकन को सिंक में धोने से बचना चाहिए क्योंकि इससे पानी के छींटों के जरिए साल्मोनेला और कैंपिलोबैक्टर जैसे खतरनाक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पूरे किचन में फैल सकते हैं। तो चिकन को हमेशा पूरी तरह कम से कम 74 डिग्री सेंटीग्रेड के आंतरिक तापमान पर पकाना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ चिकन ही पूरी तरह सुरक्षित होता है और

चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो या घर में खाना पकाने वाले हम और आप हो, फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस।

हमारा खाना बिल्कुल सुरक्षित हो तो इसकी जो साझा जिम्मेदारी है सभी की, इसकी मुख्य सीख यही है कि खाद्य सुरक्षा हर किसी का व्यवसाय है।

0: चलिए अब हम चिकन से किसी और चीज़ पर भी चलते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि चीनी जो है वो कम लेनी चाहिए।
1: कम है चीनी

चीनी कम है, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म का ये गाना सुनने में जितना मज़ेदार है ना, आज के दिन इसका महत्व उतना ही गहरा है दोस्तों। क्योंकि आज है 7 जून, बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिन हमारे श्रोताओं ने अभी अभी सेट्स अपने रेडियो सेट्स ऑन किए होंगे उनके लिए तो ये नई जानकारी है ना।

श्रोताओं, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चीनी का आज की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से क्या कनेक्शन है। तो जब हम फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खाने को मक्खी मच्छर या गंदगी से बचाना नहीं होता, इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये भी है कि जो खाना हमारी थाली में आ रहा है वो हमारी सेहत के लिए कितना सुरक्षित और कितना सही है। तो आजकल हमारे खाने में प्रोसेस फूड, प्रिजर्वेटिव्स और चीनी नमक की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो सुरक्षा के घेरे से बाहर जा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी लगातार कैंपेन चलाता है, आज से थोड़ा कम। जी हाँ, खाने में नमक, चीनी और तेल थोड़ा कम।

ज्यादा चीनी और मिलावटी खाना आज का एक मूक खतरा है, यानी साइलेंट डेंजर बन चुका है। इसीलिए आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हमें दो बातें याद रखनी है।

बता दूं आपको वो दो बातें। पैकेट बंद सामान लेते वक्त एक्सपायरी डेट और FSSAI का लोगो जरूर देखें। अपने खाने में चीनी, नमक और ट्रांस फैट को कम करें, बिल्कुल इसी गाने की तरह चीनी कम है।

0: दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का मतलब लोगों को समझाना कि सुरक्षित भोजन का मतलब सिर्फ साफ सफाई से नहीं बल्कि न्यूट्रिशन यानी पोषण का सही संतुलन भी है।
1: धीरे धीरे हाले हाले दूर दूर होगी प्रॉब्लम।
0: तो उम्मीद करते हैं कि अब आज से या पहले से ही आप अपनी खाने में ये चीनी, नमक, तेल की मात्रा कम करना शुरू कर चुके होंगे, और अगर नहीं आपने की है अभी तक तो भाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में खतरे बहुत बढ़ने वाले हैं।
1: चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी तुझ में है, कम कम है, कम कम।
0: तो ठीक है, अगर कम है तो भाई बहुत अच्छी बात है ना। बार बार क्यों याद दिला रहे हो बोल बोल करके चीनी कम है, चीनी कम है। हम तो ये कहेंगे कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ।
2: ये समझो और समझाओ।

दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम पिज्जा बर्गर जी हाँ, आपको पता था ना कि मैं यही कहने वाली हूँ। जी हाँ, जितना हम इन खानों के पीछे हम भाग रहे हैं ना, उतना ही हम अपनी ज़िंदगी से, असली सेहत से दूर होते चले जा रहे हैं। हम बंद पैकेट के खानों के इतने आदि हो चुके हैं, हम भूल ही गए हैं कि असली सेहत हमारी इस प्यारी सी दाल रोटी वाली थाली में छुपी हुई है।

0: लेकिन फिर से यही कहूंगी कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हमारी थाली में है दाल रोटी, बल्कि ये देखना भी जरूरी है कि हमारी दाल और रोटी कितनी सुरक्षित और कितनी शुद्ध है।
1: एक खटिया
2: मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया।
0: ये देखिए, दाल खरीदें तो ये जरूर जांच लें कि उसमें कोई चमकीला सिंथेटिक रंग या कंकड़ पत्थर तो नहीं है, और रोटी का आटा ऐसा हो जिसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो।
1: नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण।
0: हम तो यही कह रहे हैं, दाल रोटी खाओ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का भी यही कहना है कि खेत से थाली तक हमारा भोजन सुरक्षित होना चाहिए। खाना होगा सुरक्षित और मिलावट से दूर, तभी तो सेहत रहेगी भरपूर।

भाई आधा आधा, आजकल के बच्चे तो आधा क्या, अगर उनको पूरा भी दे दिया जाए और उसमें से थोड़ा सा अगर माँ कहती है ना कि मैं छोटा सा टुकड़ा निकाल लूँ, तो भी वो ज़मीन पर लेट लेट करके ऐसे रोना धोना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे उसमें से निकाला क्यों गया। बच्चों को थोड़े से खाने खाने के साथ साथ संस्कार भी दीजिए।

तो आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर खुद से एक वादा कीजिए, बाहर के प्रोसेस फूड को थोड़ा बाय बाय कहेंगे और अपनी थाली में घर की बनी शुद्ध सुरक्षित दाल रोटी को जगह देंगे। इसमें सब्जी भी तो होगी भाई, हम सिर्फ दाल रोटी की बात नहीं कर सकते, वो तो गाना है ना, दाल रोटी, सब्जी की बात ही नहीं है उसमें।

और अब तो आ गई रूखी सूखी रोटी। जी हाँ, रूखी सूखी रोटी भी खाते हैं बहुत से लोग, और ये मानते हैं कि जो बासी रोटी होती है वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इस गीत को आप भरपूर एंजॉय कीजिए, बिना इंटरप्शन के मैं ये गीत आपको सुनवाने वाली हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: तेरे हाथों से। तो वैसे श्रोताओं, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था जैसा कि मैंने वादा किया था, लेकिन भाई मैंने सब समय पर नज़र डाली तो 7 बजने को कुछ ही मिनट बाकी हैं और मुझे आपसे करनी है बात भी। तो बात ये है कि चाहे खाना कैसा भी हो, रूखी सूखी रोटी हो या छप्पन भोग, खाना बनाने और परोसने से पहले 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना सबसे ज़रूरी है ताकि कोई बैक्टीरिया हमारे खाने में ना पहुँचे।
1: ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा बड़ा। ओ प्यारी मंजरी।
0: खाने में सिर्फ रूखी सूखी रोटी या रोटी सब्जी दाल ही नहीं होती है, खाने में पानी भी होता है। पानी के बिना खाना हमारा जो है वो गले के नीचे उतरता ही नहीं है, तो उसकी साफ सफाई पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा।

और साथ में एक बात और बहुत ज़रूर ज़रूरी कि खाद्य पदार्थ को यानी खाने को बर्बाद होने से भी हमें ही बचाना है।

0: सूखी रोटी मेरे हाथ।
1: तो ये नायक फिल्म का गीत आपने सुना, और भाई खाने की बर्बादी रोकना, खाने में साफ सफाई रखना भी एक नायक या फिर रियल हीरो का ही काम है, जो कि आप बन सकते हैं, या फिर हम मैं यूं कहूं कि बनते ही हैं रोज, है ना।

आप भी नायक हैं? नायक फिल्म का ये गीत सुनते सुनते हम पहुंच गए हैं 7 बजे में, मतलब 7 बज चुके हैं अब, और अब प्रसारित किए जाएंगे हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो आइए सुनते हैं समाचार। अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मेरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: टैक्स लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

इस अंतराल के बाद और जो आपने समाचार सुने उनके बाद अब हमारा आना तो लाजमी ही था। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप हैं, चैनल है रेडियो गुंजन धर्मशाला। और मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। वैसे इतनी बार मैं अपना नाम लेती नहीं हूँ कार्यक्रम में, लेकिन आज बार बार लेना मुझे पड़ रहा है या मेरा मन कर रहा है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी वजह मैं आपको बताऊंगी कार्यक्रम में आगे। चलिए, जानना चाहते हैं आप वजह क्या है? वजह यह है कि मुझे कुछ सूत्रों से ये पता चला कि कई लोग बाहर जो हैं वो पूछ रहे थे कि जो रील्स में हम ज्योति पठानिया को देखते हैं, जो प्रिया हिमाचल से वाला जो चैनल है उस पर मैं ही हूँ ज्योति पठानिया। और वो ज्योति पठानिया और ये वाली ज्योति पठानिया, मतलब कि वो प्रिया और ये ज्योति पठानिया, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि आवाज़ों में थोड़ा सा उनको थोड़ा झोलमाल लग रहा था, शायद ये लग रहा था कि ये वो नहीं है जो कि यहाँ माइक से बोलते हैं, और वो जो हैं वो कोई और हैं और ये कोई और हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वही हूँ। और अब आप यकीन कर लीजिए, और जिसने पूछा था उन तक शायद ये बात पहुँच गई होगी अगर वो सुन रहे होंगे रेडियो को तो। चलिए, आपने इंक्वायरी की और मुझे अच्छा लगा, ये बात मुझ तक पहुंची अगर तो मुझे इसका स्पष्टीकरण यहाँ से देने का मौका भी मिला, वरना तो शायद मुझे पता ही नहीं होता और आप इसी उधेड़बुन में रहते कि पता नहीं ये क्या है ये सच है या नहीं है। चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए। और अब मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आने से आधा घंटा पहले ही, मतलब इस ये कार्यक्रम शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं एक रील डाल के आई हूँ जिसमें कि मैंने ये पूछा है सभी से या उनको ये बताया है आप सभी को कि आज ये जो 6 से 8 बजे तक का कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला, हमारी संध्याकालीन सभा, उसमें मैं 2-3 विषयों पर बात करने वाली हूँ। एक तो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि मैंडेटरी था, वो मुझे बात करनी ही थी क्योंकि आज मनाया जा रहा है इसको। दूसरी मुझे बात करना था सुमन कल्याणपुर जी के बारे में, और तीसरा मेरे माइंड में था कि मैं युवाओं के बारे में बात करूँ क्योंकि युवा आजकल बहुत चर्चा में है। वैसे तो हमेशा ही हमारे माइंड में रहते हैं लेकिन चर्चा में आजकल बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद बहुत सारे सोशल मीडियाज पर तो हो रही है लेकिन हमारे नेशनल चैनल्स पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस बात का शायद आप लोगों ने भी गौर किया हो कि इस तरह की कोई बात हमारे नेशनल चैनल से बिल्कुल नहीं आ रही है, ना किसी कोई न्यूज़पेपर बोल रहा है और ना ही किसी चैनल के थ्रू बोला जा रहा है। तो मैं वेट कर रही थी कि मुझे कोई रिस्पॉन्सेज मिलते, कोई कमेंट्स मिलते, तो कुछ डीएम्स मुझे आए हैं। वहाँ पर खुल करके शायद कोई रील्स पर बोलता नहीं है कि हाँ आप इस विषय पर बात करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर भी कमेंट्स में आप ज़रूर बताया करें। आगे से भी जब भी मुझे यहाँ आना होगा उससे पहले मैं 1-2 दिन पहले कोशिश करूँगी कि डाल दिया करूँ और वहाँ पर आपसे पूछा करूँगी आप कौन से विषय पर सुनना चाहते हैं। लाइव तो नहीं होगा, बात तो मेरी ही होगी, मतलब मैं ही करूंगी आपसे बातें। 10:30 के बाद मॉर्निंग में आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये तो हमने आपको बताया ही है हमेशा ही, और उसका फ़ोन नंबर भी हमारा जो लाइव वाला होता है वही रहता है, तो तब उस वक्त आप हमसे बात कर सकते हैं। और कई लोग जो ऑफिसेज जाते हैं उनका शायद ये शिकायत भी है कि हम 10:30 के बाद जुड़ नहीं पाते हैं, हम क्योंकि ऑफिस में होते हैं, अगर हमें बात करनी हो तो फिर क्या किया जाए। तो उसका समाधान भी हम निकालेंगे, हम अपने MD से बात करेंगे इसके बारे में कि उनकी समस्या है तो क्या किया जाए।
खैर, अभी मैं फिलहाल ये बता रही थी कि कुछ DMs मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि युवाओं पर बात कीजिए। लगा कि युवाओं पर बात क्या होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं पर तो हम बहुत सारी बातें करते ही रहते हैं, उन्हें अक्सर समझाते ही रहते हैं, लेकिन अब जितना भी समय हमारे पास बचा है ना आज का, ये तो मैं ये कोशिश करूंगी कि युवाओं से बात नहीं होगी, युवाओं के बारे में बात होगी। और बात होगी ये जो हमारे देश में आजकल चल रहा है CJP, इसके बारे में। तो भारत का एक बेहद चर्चित डिजिटल और व्यंगात्मक राजनीतिक आंदोलन है जो कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़े तूफान की तरह उभरा है। तो समझ गए ना आप, तो यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल मैं लेकर चल रही हूँ आपको एक गीत की ओर, और खाद्य सुरक्षा दिवस है तो भाई गीत यही सुन लीजिए। को लग रहा है कि बात आगे काम की होने वाली है, बिल्कुल चिपके रहिएगा रेडियो सर्च के साथ, जाइएगा कहीं नहीं।

जी, तो कैसा लगा ये गीत आपको? हाय हाय मिर्ची। कुछ इसी तरह से आज हमारे युवा भी हो गए हैं बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह। रेडियो गुंजन धर्मशाला से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो मैं आपको बता रही थी कि भारत का एक बेहद चर्चित डिजिटल और व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन जो है, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़े तूफान की तरह उभर गया है, ये कोई चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर मीम्स, रील्स और व्यंग्य के जरिए देश की व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला एक युवा मोर्चा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आखिर ये कॉकरोच चल क्या रहा है हमारे देश में, तो आपको थोड़ा सा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताती हूँ। इस आंदोलन ने इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर चंद दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स बटोर करके देश के बड़े बड़े राजनेताओं को भी हैरान कर दिया है। अब इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई थी? इस अनोखे आंदोलन की शुरुआत हुई 16 मई 2026 को अभिजीत दीप के नाम के एक युवा, जो कि पूर्व में राजनीतिक संचार रणनीतिकार रह चुके हैं, उनके द्वारा की गई थी। भाई क्यों की गई वो भी तो जान लीजिए, क्योंकि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री और व्यवस्था की आलोचना से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस जी ने एक कथित टिप्पणी की उनके सामने आई, जिसमें उन्होंने कुछ फर्जी डिग्री वाले प्रदर्शनकारियों या फिर बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा और समाज के परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, वो केवल फर्जी डिग्री धारकों की बात कर रहे थे, ना कि आम युवाओं की। लेकिन भाई अब तीर कमान से निकल चुका था और जो बात थी ना वो मुंह से निकल चुकी थी। तभी कहते हैं ना कि भाई बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो जो अभी कुछ हम बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है, पता नहीं, मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ तो मुझे भी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने भी सोचा समझा और फिर ऐसा लगा कि जो सच्चाई है वो तो आप लोगों तक रखी जानी चाहिए ना। हम ना किसी के पक्ष में हैं और ना ही किसी के विपक्ष में हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो पार्टी है ये कोई राजनीतिक पार्टी तो अभी तक पंजीकृत तो है नहीं, रजिस्टर तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो देश में हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में तो हम आप तक बातें पहुँचा ही सकते हैं, क्योंकि कई जागरूक नागरिक हैं जो जिनको पता ही है, वो इधर उधर से जानकारी इकट्ठा कर ही लेते हैं, लेकिन वो सही भी तो होनी चाहिए और कोशिश हम कर रहे हैं कि आप तक सही जानकारी रखें। और कई लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उनको भी तो जानने का हक है कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। क्योंकि मीम्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हर जगह कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, कभी उसको हिट लेके मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं।

चलिए हम ऐसा करते हैं कि अपनी बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ा सा बाद के लिए भी रख लेते हैं कुछ आपको बताने के लिए। अभी फिलहाल ये गीत सुनिए, बड़ा ही मज़ेदार गीत है, बड़ा चुन करके ढूंढ करके लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी तो संध्याकालीन सभा में आप सुन रहे हैं, मतलब गुड इवनिंग धर्मशाला में, किसी दिन गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी इसको लगाऊंगी ज़रूर।

0: फिर चुप या सोती हूँ और तारों भरे खामोशी हो हर आहट पे धड़कन होती हो
1: हाँ, अभी भी ऐसा लग रहा है ना कुछ कि दुनिया जो है वो सो रही है। भाई जाग रहे हैं तो सिर्फ हमारे युवा, कुछ ऐसा ऐसा माहौल है ना।

वीर भाषणों से नहीं बल्कि युवाओं की पसंदीदा भाषा यानी कि मीम्स, रील्स और एआई तस्वीरों के जरिए अपनी बात रखता है। ये हमने आपको पहले बता दिया। अब सीजेपी ने युवाओं की दुखते रग पर हाथ रख दिया और इसका मैनिफेस्टो सीधे तौर पर नीट परीक्षा में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी संस्थानों की गिरती साख जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करता है। तो हाल ही में 6 जून 2026 को यानी कल ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में युवाओं ने कॉकरोच मास्क पहन करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया। और उन्होंने ये जो अपना जो ये पार्टी है उसकी सदस्यता के लिए मजाकिया रूप में शर्तें भी रखी हैं, जैसे कि आपका बेरोजगार होना, आलसी होना या फिर दिन में 10-12 घंटे मोबाइल चलाना जरूरी है। तो युवाओं ने इसे अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति और सिस्टम की बेरुखी के साथ जोड़ करके देखा है।

जी, तूफान बिल्कुल भी छुपा नहीं है। तूफान जो है ना, ये बिल्कुल सामने ही है हमारी, और इसको दबाने की कोशिश की तो जा रही है, लेकिन कितना दबेगा ये देखने वाली बात है आने वाले दिनों में। चलिए अब बात करते हैं कि आंदोलन कितना सही है कितना गलत है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करवाने और सरकार से जवाबदेही मांगने का अधिकार तो हर नागरिक को है ही, तो युवाओं को अपनी भड़ास निकालने और एकजुट होने का ये एक बड़ा मंच दे रहा है।

दोस्तों हम फिर से कह रहे हैं एक बार कि ना हम किसी के पक्ष में हैं ना किसी के विपक्ष में हैं। हम बस केवल यही चाहते हैं कि जो भी आप प्रदर्शन करते हैं, वो लोग युवा जो भी प्रदर्शन करते हैं, वो कम से कम इस तरह से करें, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, किसी का कोई नुकसान उसमें ना हो, उनका अपना नुकसान भी ना हो, और ना ही वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करें, ना वो अपने आप को डैमेज करें।

क्योंकि डैमेज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना हमारी, ये हंसने गाने के लिए बस पल दो पल ही तो है।

0: जी हाँ, हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा किया। लाठी डंडों या हिंसा की बजाय वो युवा हाथ में फूल लेकर और कॉकरोच मास्क पहनकर अनोखे ढंग से विरोध कर रहे थे, जो पर्यावरणविद सोनम वांगचुक और अन्ना हजारे जैसे विचारकों को भी आकर्षित कर रहा था।
1: हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
0: या यूं कहूं कि आकर्षित कर रहा है हम सब लोगों को भी।
1: हंसने गाने के लिए है पल दो पल।
0: और इस विरोध ने सरकार और मुख्य धारा की मीडिया का ध्यान देश की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की तरफ मजबूती से खींचा है।

रिपब्लिक के आलोचकों और सत्ता समर्थकों का आरोप तो यह है कि इसके संस्थापक जो हैं वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई स्वतंत्र जन आंदोलन नहीं है बल्कि विपक्ष द्वारा पोषित एक डिजिटल टूल या फिर प्रोपोगंडा है। और इसकी बाहरी लोकप्रियता का फायदा उठा करके अब कुछ साइबर अपराधी जो हैं, मतलब ये दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट है, शायद ऐसा हो सकता है कि फर्जी लिंक और वेबसाइट बना करके युवाओं से ठगी करने लगें और जिससे कि पुलिस को अलर्ट जारी भी करना पड़ा है।

और कुछ विशेषकों का मानना यह है कि सोशल मीडिया पर फॉलो करना आसान होता है, लेकिन धरातल पर किसी वास्तविक राजनीतिक बदलाव के लिए जिस संगठन और नीति की जरूरत होती है उसका इस पैरोडी आंदोलन में अभाव है। लेकिन श्रोताओं, इस जनता पार्टी को, ये जो भी पार्टी है, ये कॉकरोच, तो इसको सिर्फ एक इंटरनेट या मजाक या मीम समझकर खारिज तो नहीं किया जा सकता। भले ही इसके पीछे राजनीतिक हित तो हो सकते हैं या इसकी उम्र लंबी नहीं भी हो सकती है, लेकिन रातों रात करोड़ों युवाओं का इससे जुड़ना ये साफ दिखाता है कि आज का युवा रोजगार और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली के लिए कितना तड़प रहा है।

0: तो सरकार इसे चाहे गंभीरता से ले या ना ले,
1: नहीं सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं प्यारे तू गम न कर
0: जी। बिल्कुल, ये जो कॉकरोच के बहाने उठा युवा है, तो इन युवाओं का गुस्सा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म जरूर है, हम तो यही कहेंगे।

श्रोताओं, तो आपने साथ ही साथ मतलब हमारी बातों के साथ साथ ही ये गीत भी सुन लिया। बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा गीत था जिसे आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, युवाओं के बारे में बात हमने कर तो ली है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत कम है जितना हमने सोचा था, और जितनी बात हमने करनी थी उसका शायद 30% या 40% अभी तक मैं ये बात कर पाई हूँ। और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी मैं या तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला में या फिर किसी और दिन गुड इवनिंग धर्मशाला में, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, वरना शायद हो सकता है जो कुछ आज आपने सुना वो आपके दिमाग से निकल भी जाए। कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में इस टॉपिक पर थोड़ा सा और आगे एलाबोरेशन की जाए कि आखिरकार हमारा युवा चाहता क्या है और उसे मिल क्या रहा है। और इतने सारी पढ़ाई करने के बाद फिर जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है और वो सड़कों पे है तो फिर उसे कैसा फील होता होगा। अभी मेरे सामने एक न्यूज़ है, उसमें ये है कि बेरोज़गारी का बहाना बना करके पत्नी और बच्चे के प्रति कर्तव्य से आप नहीं बच सकते हैं। और ये किसी दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में एक व्यक्ति को अपने बेटे को 6,000 रुपये मासिक भरण पोषण देने का निर्देश देते हुए कहा है कि चाहे वो कोई काम करता है या नहीं करता है, कमाई करता है या बेरोज़गार है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे को भरण पोषण तो देना ही होगा। तो अगर युवाओं के लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि पहले वो काम कर रहा हो और फिर बाद में उसकी शादी हो जाए और किसी कारणवश वो बेरोज़गार हो जाए, तो ये एक जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं माता पिता के साथ साथ में, बेशक वो उसकी बीवी ही है, परंतु कहीं ना कहीं वो खिन हो जाता है। फिर ऐसे में वो क्या करेगा, मतलब है ना। खैर, इस पर हम बात अगले किसी कार्यक्रम में ज़रूर करेंगे। फिलहाल मैं आपको सुमन गल्याणपुर का गाया एक गीत सुनवा रही हूँ, क्योंकि उनको भी मैंने आज नज़र में रखा था, मेरे दिमाग में थी सुमन गल्याणपुर भी, लेकिन उसके बारे में बात हो नहीं पाई। तो ये गीत आप ज़रूर सुनिए जो उन्होंने गाया है।

0: चलिए अब चलते हैं हम प्रादेशिक समाचारों की ओर, जिसे रिले किया जाएगा हमारे शिमला केंद्र से।
1: आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील, खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही, लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के सभी पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने जारी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वित्त विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना को वापिस लेने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य सभी को अगले महीने के पूरे वेतन के साथ स्थगित वेतन का बकाया जारी किया जाएगा।
2: चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स है, और जो MLA है और जो मिनिस्टर्स है उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से उनकी डेफरमेंट सैलरी जो 3 महीने का एरियर होगा वो भी मिलेगा, और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो 65 साल से 1/16 से 31/1/2022 के थे, उनका जो भी एरियर है वो 65 से 70 साल के बीच में, वो भी अगले महीने हम उसको रिलीज कर देंगे।
1: मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से हर महीने 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने HRTC के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की।
2: तो सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में HRTC की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिल जाया करेगी, और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है HRTC जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। HRTC के पेंशनर्स की टोटल पेंशनर का खर्चा 23 करोड़ है, 3 करोड़ HRTC जो अपना रेवेन्यू होता है उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो उनकी एक और मेडिकल रिवर्समेंट की बात थी, तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूँ ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए।
1: इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आज शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 लेन परियोजना में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है और नाबार्ड की सहायता से ये परियोजना चलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में पेड़ों को कटान से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्विरोध चुनी गई नगर पंचायत नारकंडा को 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने आज चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में 12 लाख मतदान केंद्रों पर काम करने वाले बूथ स्तर के अधिकारी चुनाव आयोग के धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने जीवन में प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चंबा जिले के मतदाता भविष्य में होने वाले चुनावों में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करें।
3: इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका देश भारत, जिस चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, हमारे कलेक्टर साहिबान लोगों ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? भारत की सरकार। 65 लाख लोग काम करते हैं।
1: आज विश्व खाद्य दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने व संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रशिम रथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रशिम रथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी दिनकर की रचनाओं में निहित शाश्वत मूल्यों को आत्मसात कर देश के उज्ज्वल भविष्य की ध्वजवाहक बनेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।
4: छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक पहलू पर भी, रचनात्मक पहलू पर हर तरह से काम करता है। ओवरऑल एक छात्र का कैसे डेवलपमेंट हो, उसकी सहभागिता समाज के हर वर्ग में किस प्रकार से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ करके काम करे, विद्यार्थी परिषद से खासतौर से पूरे देश के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि देश के लिए राष्ट्र सर्वोपरि संस्कार और संस्कृति के साथ काम करने के लिए अगर कोई छात्र संगठन है तो विद्यार्थी परिषद है।
1: इस बीच जयराम ठाकुर ने शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान वर्ग कार्यक्रम में भी भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और यातायात दबाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन व सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन को संभावित आपदाओं व चुनौतियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है।
5: ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफी इंक्रीज हुआ है, इससे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो क्या SOPs रहेंगे इसमें। BRO से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिजास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट SOPs बनाई जाए ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाए और ये प्लान कर पाए कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो।
1: सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार का राजकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के 3 विद्यार्थियों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यापक कमल शर्मा ने बताया कि स्कूल के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। खास बात यह है कि हरिपुर धार स्कूल में हर वर्ष बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
6: ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों का चयन होता रहा है। इस वर्ष भी हमारी इस पाठशाला से 3 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। नवोदय के अतिरिक्त यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल के लिए भी हुआ था। 8 बच्चे ऐसे है जो स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप की जो योजना है उसमें 1,80,000 बच्चों को दिया जाता है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं।
1: शिमला के निकट जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय लोहराब में 4 वर्षीय ललित कला स्नातक बीएफए डिग्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून तय की गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामयानी बिश ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज में 12 से 19 जून तक प्रवेश पूर्व परामर्श दिया जाएगा। कामयानी बिश ने कहा कि इच्छुक विद्यार्थी बीएफए डिग्री पाठ्यक्रम के तहत पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, संगीत, गायन व वाद्य, तबला और नृत्य विषयों में प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल आज मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बड़ी पर्यटकों की आवाजाही। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह।
0: जी श्रोताओं, तो हम भी अब आपसे ले लेते हैं इजाज़त। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूं मैं ज्योति पठानिया। लेकिन फिर भी आप चलते रहिए, चाहे किसी के दिल जलते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं

0: भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
1: अगर तुम्हें लगता है ना मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियाँ देखो।
2: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
3: अरे बाप रे,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियां देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे,

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के

0: विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब इंसान हर किसी के लिए अच्छा करता है तब सबसे ज्यादा चोट भी उसे ही मिलती है। लोग उसके धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं और उसे अकेला देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो, अकेला वही किया जाता है जिसमें भीड़ से अलग चलने का साहस हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल होते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए शांत रहो अर्जुन, क्योंकि समय जब उत्तर देता है तब लोगों का घमंड अपने आप शांत हो जाता है।
2: अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा कलेश करती हूँ, पहले जाके दूसरों की बीवियां देखो।
3: वो अलग ही लेवल का बंदा था।
4: अरे बाप रे,

0: हाजिर है भैया।
1: तो फिर आज मेरी रूह की बेकरार घड़ियों में से चंद घड़ियां ले लो, आओ बैठो। बचपन में तुम अच्छा गाया करते थे, आज एक ऐसा गाना सुनाओ जो सोच से भरा हुआ हो।
0: क्या कह रहे हो भैया?
1: हाँ मनीष, मैं आज तक शारदा को नहीं भूला।
0: ठीक कहते हो भैया, भूलने के लिए मर्द नहीं औरत का दिल चाहिए।
2: क्यों नहीं, औरत सब कुछ भूल सकती है, उसका दिल समुंदर होता है। समुद्र में कई तूफान आते हैं, कई कश्तियां डूब जाती हैं, फिर सतह बराबर हो जाती है जैसे कोई कश्ती डूबी ही ना थी।
0: ये तो उनसे पूछे जिनकी कश्ती डूब गई।
1: ये बेचारी क्या जाने की मोहब्बत क्या चीज है, इसे क्या मालूम कि भूलना कितना कठिन है।
0: हाँ भैया, किनारे पर खड़ा तमाशाई डूबने वाले की हालत क्या जाने।
2: जिन्हें डूबने का अफसोस वो तूफानों से नहीं खिला करते, चोट खाकर इलाज नहीं ढूंढा करते, शीशाए दिल चूर होने पर जोड़ा नहीं करते। जो मोहब्बत करते हैं उन्हें भूलना भी आना चाहिए।

मनोरंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।